सुप्रभातम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि थी। तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम अंतर्गत श्रीनिवास सहाय की वार्ता, बाग लगाने की तैयारी।
1: भाइयों नमस्कार। मौसम आ गया है बाग लगाने के लिए तैयारी करने का। अभी तक आपको गड्ढे की खुदाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यदि अभी तक आप गड्ढे की खुदाई नहीं किए हैं बाग लगाने के लिए, तो आप जानकारी ले लें। बाग लगाने के लिए गड्ढा बनाना, गड्ढा भरना, नर्सरी से पौधा लाना तथा पेड़ लगाना आदि बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फलदार वृक्ष दीर्घजीवी होते हैं, इसलिए उन्हें लगाने से पहले इन सभी बातों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए, जो बगीचे की सफलता के लिए आवश्यक है। आरंभ में की गई गलतियों की भरपाई जो है पूरी जिंदगी भर पेड़ जो है वो नहीं

0: कर पाता है और आपको भी नुकसान होता है। इसलिए स्थान का चुनाव, फलों और उनकी किस्मों का चुनाव, भूमि का रेखांकन, गड्ढा खोदना और भरना, लगाने का उपयुक्त समय आदि की वैज्ञानिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बाग लगाने में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। पौधे को किसी विश्वसनीय पौधशाला से खरीदें, स्वस्थ पौधा ही खरीदें। जिस पौधशाला से पौधे खरीदने हैं वहां जाकर आप स्वयं देखें, समय पर पौधों का ऑर्डर देकर बुक करा लें। यह देख लें कि पौधे में जड़ें अच्छी तरह हैं और मिट्टी के गोले ठीक हैं, तभी उन्हें खरीदें। फल वृक्षों के रोपण का उचित समय जुलाई अगस्त है। सिंचाई की सुविधा होने पर इन पौधों को बसंत ऋतु में भी आप रख सकते हैं। गड्ढे से मिट्टी पौधे के गोले के बराबर ही निकालनी चाहिए, जिससे पौधा ठीक प्रकार से बैठ जाए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि रोपण या कलिकायन का जुड़ाव भूमि से 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रहे। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए वे सभी जगह उपयुक्त होते हैं जो या तो शहर के नजदीक हों या जहां पर यातायात की सुविधा जो है पर्याप्त उपलब्ध हो। मिट्टी को उद्यान का आधार कहा जाता है, इसलिए इसका भी चुनाव फल वृक्षों के अनुरूप होना आवश्यक है। फल उद्यान हेतु दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। फल वृक्षों की अच्छी फलत के लिए उपजाऊ भुरभुरी और हल्की दोमट मिट्टी आदर्श समझी जाती है। ऐसा ज्ञात किया गया है कि मिट्टी में थोड़ी चूने की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि इससे फलों के अंदर मीठापन आ जाता है। आप बाग का रेखांकन कैसे करेंगे, इसलिए के लिए आप जानकारी ले लें। जिस खेत में बाग लगाना हो, सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चला करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लेना चाहिए। आदर्श रेखांकन वही समझा जाता है जिसमें प्रत्येक वृक्ष को अच्छी तरह विकसित होने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिल जाए और बाग की कर्षण क्रियाएं भी सफलतापूर्वक हो सके। इसके लिए वर्गाकार विधि, षड्भुजाकार विधि, पंचकोण विधि से आप बाग लगा सकते हैं और रेखांकन कर सकते हैं। रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटियां गाड़ देनी चाहिए। अब इन खूंटियों को मध्य मानकर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा जो है गड्ढा आप खोद लें। गड्ढा खोदते समय ऊपर की गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ आप रखें। गड्ढे को कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए खुला छोड़ दें, जिससे कीड़ा और उसके अंडे सूर्य की तेज रोशनी और हवा से खत्म हो जाए। अब नीचे की मिट्टी में 40 से 45 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे को भर देना चाहिए। फिर ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम SSP, 15 से 12 किलोग्राम कंपोस्ट खाद तथा 20 से 25 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफास दवा मिला दें, ताकि दीमक कीड़ा जो है वो नहीं लगे। बाग लगाते समय पौधों से पौधों के बीच की दूरी आप जान लें। आम के लिए ये दूरी है 10 से 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर लंबाई। आम्रपाली के लिए यह दूरी जो है 2.5 मीटर हो जाती है। अमरूद के बाग 6 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। लीची के बाग 8 मीटर की दूरी पर आप लगाएं। केला के बाग 2 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए। ये दूरी पौधे से पौधे के बीच की हुई। इस तरह से आप बाग लगाने की तैयारी अभी से करें।
1: खेत खलिहान कार्यक्रम अंतर्गत आप सुन रहे थे श्रीनिवास सहाय की वार्ता बाग लगाने की तैयारी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए

0: राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस की एक गली से गुजर रहे थे। बनारस की अधिकांश गलियां संकरी होती हैं। जिस गली से स्वामी जी गुजर रहे थे वह भी एक संकरी गली थी। स्वामी जी के पीछे बंदरों का एक दल लग गया। बनारस के लाल मुंह के बंदर बहुत उत्पाती और निर्भीक होते हैं। जब स्वामी जी ने बंदरों के दल को उनका पीछा करते देखा तो उन्होंने अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए अपनी चाल तेज कर दी। बंदरों का समूह भी उसी तेज चाल से उनका पीछा करने लगा। ऐसा करते देख स्वामी जी उन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए तेजी से दौड़ने लगे।

0: वे बड़े परेशान थे कि इन शैतान बंदरों से किस तरह उन्हें छुटकारा मिले। इतने में उन्हें लगा कि कोई उन्हें पुकार कर कह रहा है, स्वामी जी भागिए नहीं, मुकाबला कीजिए। स्वामी जी रुक गए और पीछे की ओर मुड़े। स्वामी जी को मुड़ते देख पीछा कर रहा बंदर का समूह ठिठक कर रुक गया। स्वामी जी ने हिम्मत कर उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। ज्यों ज्यों स्वामी जी उन बंदरों की ओर बढ़ते, बंदरों का समूह उसी रफ्तार से पीछे होता गया और धीरे धीरे वे सभी गायब हो गए। स्वामी जी को ये बात समझ में आ गई कि जीवन में समस्याओं से भागने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुकाबला करने से ही सफलता मिलती है, समस्याओं का समाधान होता है। हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई समस्या पैदा होती रहती है और उन समस्याओं का निदान समस्याओं से भागने से नहीं बल्कि हिम्मत कर उनका मुकाबला करने से ही हो सकता है। समस्याओं से भागने का अर्थ कायरपन है, उसे पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता है। एक कहावत भी है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जिसमें हिम्मत है। डर तो कायरता की निशानी है, जो कायर होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब मिसाइल विकसित कर रहे थे तब उसके परीक्षण के दौरान उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन उस असफलता ने उनका उत्साह कम नहीं किया। उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हार के पीछे ही हमारी जीत छिपी हुई है। उनकी कोशिशें जारी रहीं और एक दिन ऐसा आया कि वे अपने तीसरे प्रयास में अग्नि मिसाइल के परीक्षण में सफल हो गए। इसलिए कहा गया है कि अगर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिले तब लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी जरूर। एक बात और, सफलता का रास्ता मुसीबतों और विपत्तियों के बीच होकर जाता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में वे क्षण अवश्य आए हैं जब उसे विपत्तियों, मुसीबतों और संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मनुष्य इन कठिनाइयों, विपत्तियों और समस्याओं की कसौटी पर खरा उतर जाता है तब उसे सफलता मिलनी निश्चित है। हमें सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि कभी कभी विपत्तियां हमें अधिक बल प्रदान करने, अधिक शक्ति देने, अधिक ऊर्जावान बनाने, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने और अधिक सफलता दिलाने का कारण बन जाती हैं। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि हम समस्याओं से, विपत्तियों से भागे नहीं, मुकाबला करें। मन में ये दृढ़ विचार रखें, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आत्मविश्वास से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये आत्मविश्वास हमें संदेश देता है कि हमें कठिनाइयों से विचलित नहीं होना है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रेरक कविता में लिखा है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। यह एक ऐसा सूत्र है जिसे हमें सदा याद रखना चाहिए।
1: चुनौतियों का सामना, अभी आप सुन रहे थे नौमी शांति हेमरम के स्वर में आज का चिंतन मनन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। घड़ी में प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कहते हैं कि माँ हमें जन्म देती है लेकिन मातृभूमि हमें पहचान देती है। माँ की गोद में हम चलना सीखते हैं और मातृभूमि की गोद में हम जीना सीखते हैं। आज हम इस भक्ति संगीत के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अपनी मातृभूमि के नाम करते हैं। मातृभूमि केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और असंख्य बलिदानों का जीवंत प्रतीक है। इसकी हर मुट्ठी मिट्टी में हमारे पूर्वजों का परिश्रम, वीरों का रक्त और संतों का तप समाया हुआ है। यही वह भूमि

भूमि है जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश पूरी दुनिया तक पहुंचा। यही वह धरती है जिसने हमें प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। हमारा भारत वर्ष अनेक भाषाओं, अनेक धर्मों, अनेक वेशभूषाओं और अनेक परंपराओं का सुंदर संगम है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर असम की हरियाली तक, हर क्षेत्र हमारी अलग पहचान रखता है। लेकिन इन सबको जोड़ता है एक ही सूत्र, भारत की एकता। तो आइए, भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की पहली भेंट हमारी मातृभूमि के नाम।

हम बातें कर रहे हैं भक्ति संगीत की। आज हम इन उन शक्तियों के बारे में बातें कर रहे हैं जो एक अदृश्य शक्ति है जिसके होने की पूरी गुंजाइश है और हम उन शक्तियों पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन तभी कहीं से कोई उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। ये कोई संयोग नहीं है, कोई किस्मत का चमत्कार भी नहीं कह सकते हैं कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये हमारे ऊपर हमारे ईश्वर की, हमारे प्रभु की कृपा होती है जिसके कारण हमें अंधियारे में भी रोशनी नज़र आती है। हम अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उनके दिखाए गए मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। ईश्वर हमेशा चमत्कारों में से नहीं, बल्कि कभी किसी के मुस्कान में, किसी अजनबी की मदद में, किसी बच्चे की हंसी में, तो कभी किसी भजन की पंक्तियों में हमें मिल जाते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं होता, बल्कि यह विश्वास रखना होता है कि हमारे हित में जो भी होगा वो सही होगा। ईश्वर ने जो भी हमारे लिए रचा है, हमारे लिए जो नियति ने तय किया है वो अच्छा ही होगा। हमारे रास्ते में चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, कितनी सारी चुनौतियां क्यों ना आए, हमें हिम्मत हमेशा बनाए रखना चाहिए और अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए।

अवसर देती है हमें। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना या आरती करना नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में प्रेम, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी ना हो तो फिर बड़ी से बड़ी पूजा व्यर्थ है। किसी जरूरतमंद की सहायता और प्रकृति का सम्मान, ये सबसे बड़ी भक्ति है। कहा जाता है कि जब शब्द कम पड़ते हैं तो संगीत बोलता है। भक्ति संगीत मन को शांत करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है। और भक्ति के कई सारे रूप हैं, जिसमें कभी हम अपने ईश्वर से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे निवेदन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो कभी हम इस कुछ नोक झोंक भरी बातें भी अपने ईश्वर से करते हैं। तो आइए हम इस भक्ति संगीत के जरिए करते हैं कान्हा से ये नोक झोंक।

संगीत हमें हमारे अंदर की नकारात्मकता को भगाने और ईश्वर से हमें नज़दीक जाने का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना गया है। ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि एक सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए। जब मन में विश्वास, जीवन में सत्कर्म और होठों पर प्रभु का नाम हो, तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाती है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस हमें उनके होने का एहसास बनाए रखना है। ईश्वर से आराधना करने का कई सारा मार्ग है। कोई भक्ति संगीत में ही अपनी जीवन की प्रबंधन को ढूंढ लेता है संतों की अमर वाणी के जरिए, कोई उनकी भक्ति करता है, तो कोई कृष्ण की बांसुरी को अपने जीवन का संगीत बना लेता है, कोई शिव की मौन की महिमा का वंदन करता है, तो राम नाम की शक्ति का बखान किए बना बिना किन्हीं का जीवन निरर्थक लगता है। और जब माता रानी के भक्ति की बात हो तो फिर बात ही क्या। माता रानी की जो भक्ति होती है वो हमें किसी भी परेशानी से उस बेड़ा पार करने के लिए हम आराधना करते हैं देवी माँ की।

0: बेड़ा पार करना माँ, दुष्ट संहार करना माँ, इन्हीं शब्दों के साथ अब भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना से दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा की वार्ता, कान की देखभाल कैसे करें।
1: कान शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हम जितनी अच्छी तरह से इसकी देखभाल करेंगे, कान में किसी भी प्रकार की समस्या होने से बच सकते हैं। आज हम कान की अच्छी तरह से देखभाल कैसे किया जाए इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जिस पर अमल या गौर करके समस्या से बचा जा सकता है। थोड़ी सी लापरवाही कान के लिए खतरनाक हो सकती है। यदि कान में मैल वैक्स जम जाए और ठीक से सफाई नहीं की जाए, तो मैल की परत धीरे धीरे पत्थर का रूप धारण कर लेती है। इससे कान

0: का रास्ता बंद हो जाता है तथा व्यक्ति को दर्द के साथ साथ ऊंचा सुनाई देने लगता है। ऐसे में यदि शुरुआत में ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो समस्या होने से बचा जा सकता है। इसमें प्रथम इस बात का ध्यान रखें कि नहाते समय कान में पानी शैम्पू का फेन न जाए। खासकर स्विमिंग पूल में नहाते समय कान में पानी न जाए, इसके लिए विशेष सावधानी बरतें। नहाने से पहले कान को रुई से अच्छे तरह से बंद कर लें। कान में खुजली होने पर किसी भी प्रकार का तेल न डालें। कान में मैल और गंदगी की परत न जमने दें और कान की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कान में होने वाले दर्द को हल्के में न लें। दर्द होने पर ENT से मिलकर अच्छे से उपचार करा लेनी चाहिए। कान की सफाई के लिए नुकीली चीज़ें जैसे चाबी, क्लिप, पिन, लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे कान के पर्दे को क्षति पहुंच सकती है। आजकल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। इसका असर भी कानों पर पड़ता दिख रहा है। ज़्यादा तेज म्यूजिक या फ़ोन पर लंबी बात करने से बचना चाहिए। ईयरफोन का उपयोग भी कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य तेज आवाज़ में टीवी देखता है और बार बार आवाज़ देने पर भी नहीं सुनता हो तो समझना चाहिए कि सुनने की समस्या है। आजकल कान में फंगस और फफूंदी का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। इस हालत में तुरंत ENT चिकित्सक से संपर्क कराना चाहिए। कान में पानी जाने से भी फंगस या संक्रमण हो सकता है। नहाते समय वैसे पोखर या तालाब का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां का पानी जमा हुआ हो और बहता नहीं हो। इससे भी कान में संक्रमण का खतरा हो सकता है। नहाते समय ऊंचाई से नदी या तालाब में नहीं कूदना चाहिए या छलांग लगाना चाहिए। इससे कान के पर्दे को क्षति पहुंच सकती है। एलर्जी होने पर भी कान में संक्रमण की समस्या हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कान में आंधी, झिंगूर, रेलगाड़ी या सनसनाहट जैसी आवाज़ें हो तो इसको हल्के में न लें। इसके लिए संबंधित डॉक्टर से मिलकर उचित परामर्श लें, अन्यथा बहरापन या सुनने की समस्या हो सकती है। अगर बहुत दिनों तक कान बहने की समस्या हो तो डॉक्टर से मिलकर उपचार करा लेनी चाहिए, नहीं तो कान के पर्दे को अस्थायी क्षति पहुंच सकती है। ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ते समय कान में रुई डाल लेनी चाहिए। कान में कोई भी पत्ते या फूल का रस नहीं डालना चाहिए। गरम तेल भी नहीं डालनी चाहिए। ज़्यादा शोरगुल वाले वातावरण में रहने से भी कान में सुनने की समस्या हो सकती है। फैक्ट्री या कारखाने में तेज ध्वनि वाले स्थान पर लगातार काम करते रहने से भी बहरापन की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तेज हॉर्न का उपयोग गाड़ी में नहीं करनी चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ कान में सुनने की समस्या हो सकती है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम कान में होने वाली समस्या से बच सकते हैं और फिर कान शरीर के साथ साथ प्रॉपर साथ देता रहेगा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा की वार्ता, कान की देखभाल कैसे करें। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। घड़ी में प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान पाठ रंजना जोगलेकर एवं श्रीकांत पार गांवकर के स्वर में।
2: एपिसोड नंबर 261।

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है। ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहाँ कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। गढ़ में प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं उनका प्रसारण समय। अब से कुछ देर बाद प्रातः 7 से आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग के कलाकार होंगे ध्रुव कुमार पंकज, कथा सागर में आप सुनेंगे देवेंद्र सौरभ की कहानी बेचारा, और साथ ही साथ आप लुत्फ उठाएंगे फिल्म संगीत का। समाचार प्रभात का प्रसारण समय है प्रातः 8:00। मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे 8:15 पर, और खबरनामा का प्रसारण समय है प्रातः 8:30। नगमे नए पुराने आप सुनेंगे सुबह 9:06 पर।

सुबह 9:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे नाटक अब बस भी करो। इसके लेखक हैं श्री जयप्रकाश शर्मा एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे सचिन कुमार। दिन में 11:00 आप सुनते हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम गुलदस्ता का प्रसारण समय है दिन में 11:30 पर। नारी लोक कार्यक्रम आप सुनते हैं दिन में 12:00। प्रस्तुत करता होंगे श्री पार्वती के। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं 12:30 पर। दिन में 1:00 लोकरंग के कलाकार होंगे रूपा सिंह। प्रादेशिक समाचार रांची से का प्रसारण समय है दिन में 1:10।

0: दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल। प्रस्तुतकर्ता होंगे दसमती छतर और इसके लेखक हैं अशोक शरण। दोपहर समाचार दिल्ली से आप सुनते हैं 2:15 पर। अपराह्न 3 का समय है तरंग कार्यक्रम का, जिसके कलाकार होंगे चंदन दास। युवाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं संध्या 5:00। 5:30 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण समय है संध्या 6:00। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोक गीत की गायिका होंगी सोनी कुमारी। 7:52 पर सोलहरी की गायिका होंगी प्रतिभा सिन्हा। रजनीगंधा कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 250th अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 crore rupees अस्ति। आर्थिक विकासं क्षेत्रीय सम्पर्कं औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः। समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयाणां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्यतावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा 75th June 1950 जून मासस्य 25th दिनांके भारतीय

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं आज के इस गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में। हम जैसा कि आपको बताए हैं कि आज रसरंग के कलाकार होंगे ध्रुव कुमार पंकज। हम सुनेंगे कथा सागर में बेचारा कहानी, देवेंद्र सौरभ कहानीकार होंगे। और रेल सूचना समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास और होगा फिल्म संगीत। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रेल सूचना से। आइए

हम जानते हैं भागलपुर से गुजरने वाले कुछ जो प्रमुख ट्रेनें हैं उसका प्रसारण समय क्या रहेगा। गाड़ी संख्या 1553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसके भागलपुर से खुलने का सही समय है 7:50। ये गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 5 से अपने नियत समय से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 1306 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोज भागलपुर से गुजरती है, उसका सही समय है 7:45। ये गाड़ी अपने नियत समय पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आने की संभावना है। गाड़ी संख्या 1268 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस 17 मिनट देरी से चल रही है। इसके भागलपुर आने का सही समय 8:15 है, जो कि गाड़ी 17 मिनट लेट चल रही है। तो आप अपने यात्रा को इस हिसाब से आगे या पीछे कर सकते हैं। गाड़ी संख्या 1568 ब्रह्मपुत्रा मेल, ये गाड़ी 55 मिनट लेट चल रही है। ये इस गाड़ी को सुबह 9 बजे भागलपुर आने की संभावना है। गाड़ी संख्या 1304 साहिबगंज रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जो कि भागलपुर आने का इसका सही समय 9 बजे है, और ये गाड़ी अपने नियत समय से चल रही है, और जो कि अभी साहिबगंज से रवाना हो चुकी है और सुबह 9 बजे भागलपुर आने की संभावना है। गाड़ी संख्या 6341 साहिबगंज जमालपुर मेमू अपने नियत समय सुबह 9:15 पर भागलपुर आने की संभावना है। ये गाड़ी 7:20 पर साहिबगंज से रवाना होगी। और भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस का, जिसका भागलपुर से खुलने का जो समय है वो है सुबह 11:55, वो इस गाड़ी को अपने नियत समय से यहाँ से रवाना होने की संभावना है। तो ये तो हुई बात रेल से जुड़ी। तो आप भी अपने जो यात्रा का प्लान है उसे आप इन गाड़ियों के समय के हिसाब से करें, और आप अपने घर से समय से निकलें, हड़बड़ी में ना निकलें, अपने साथ पीने का पानी ले लें, और कुछ जो अगर लंबी यात्रा आप कर रहे हैं तो कुछ खाने का की व्यवस्था भी अपने साथ करते जाएं, ताकि परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। और बहुत सारे गाड़ियों में आपको बहुत कुछ खाने को मिलेंगे, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने सेहत का ख्याल रखते हुए अपने यात्रा का प्लान करें। और हम बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आगे, और आपको हम सुनवाते हैं ध्रुव कुमार पंकज के स्वर में कबीर दास रचित ये भजन।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में अब हम रुख कर रहे हैं आज के इतिहास के पन्नों की तरफ। आज जैसा कि हम सभी को पता है कि आज है 25 जून और आज हमारे इतिहास के पन्नों में कई सारे प्रमुख जो बातें हुई हैं वे हम जानने की कोशिश करते हैं। 25 जून 1975 की रात भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह लगभग 21 महीने मार्च 1977 तक चला। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। इस दिन को भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों विशेषकर युवाओं को उस दौर की याद दिलाना है जब 1975 में आपातकाल लागू करके भारत के लोकतंत्र और संविधान का दमन किया गया था। आपातकाल की जो स्मृति है वो आज के दिन ताज़ी हो जाती है। हमारे 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इस अवधि के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे और विपक्ष के हजारों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस ऐतिहासिक घटना को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद रखने के लिए केंद्रीय सरकार, संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय

ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया था। इस दिवस के उपलक्ष्य में देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कई सारे जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि संवैधानिक मूल्य पर केंद्रित वाद विवाद और आपातकाल के अनुभवों पर आधारित संगोष्ठी की भी तैयारी की जाती है। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि 25 जून का बहुत ही अहम एक अहम तिथि है हमारे आज के हमारे देश के इतिहास में। हर वर्ष 25 जून को समुद्री नाविकों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन में उनके योगदान को सम्मान देना है। विश्व विटिलिगो दिवस भी आज के दिन हम मनाते हैं। यह दिन विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, के बारे में जागरूकता फैलाने, इससे जुड़े भ्रम दूर करने और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए हम मनाते हैं। और अभी तो बहुत सारी बातें हम और भी जानेंगे आज के इतिहास यानी कि आज का जो डेट है उससे जुड़ा हुआ। तो फिलहाल हम रुख करते हैं ध्रुव कुमार पंकज के एक और गायन की ओर और इनसे सुनते हैं हरिवंश राय बच्चन रचित गीत।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे और रुक करते हैं कथा सागर की ओर। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं ये कहानी, देवेंद्र सौरभ रचित ये कहानी है बेचारा। आइए सुनते हैं ये कहानी।

सुबह शहर जाएंगे क्या? कमरे में कदम रखते ही सरोज ने यह प्रश्न उछाला था। वैसे तो सुरेश कल शहर जाने की चर्चा दोपहर में ही घर में कर चुका था। कई क्लाइंट का इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यूज हो चुका था। इस शादी के चक्कर में वह 2 माह से अपने क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसका कल शहर जाना लगभग तय ही था कि पत्नी का यह प्रश्न उसके सम्मुख उपस्थित हुआ। हाँ, जाऊँगा तो जरूर, और पहले ही बस से जाना चाहूँगा, सुरेश ने जवाब दिया। मुझसे मिलकर ही जाएंगे आप, ढिबरी बुझाते हुए सरोज ने कहा। निश्चित रूप से मिलकर जाऊंगा, लेकिन अभी आप कहीं जा रहे हैं क्या? सुरेश ने पूछा तो अंधेरे में ही उसके चमकते दांत हंसने का आवाज दे रहे थे। सुबह सुबह सब्जी की खुशबू से सुरेश की नींद खुली थी। अलसाए

खुली पलकों में बढ़े हाथ जब खाली लौटे तो उसे बिछावन पर अकेले होने का एहसास हुआ। घड़ी पर नजर पड़ते ही बाप रे बाप, 6 बज गए, चिल्लाता हुआ वह उठ बैठा था। क्या हुआ? आवाज सुनकर दौड़ती आई सरोज ने पूछा। 6 बज गए, तुमने जगाया क्यों नहीं? सबको पता था कि पहली बस से ही शहर जाना है। सुरेश जरा धीमे स्वर में अपने गुस्से का इजहार कर रहा था, लेकिन सरोज मंद मंद मुस्कान बिखेर रही थी। अमूमन रोज तो दिन चढ़ने के बाद भी सुरेश को जाने नहीं देता। जरा रुको, जाना ना, यह रोज का उसका बहाना था। शादी के बाद आज पहली बार वह शहर जा रहा था। भोजन कराने और टिफिन देने की उसकी ही जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अंधेरे ही रसोई में लग गई थी। वह भोजन टिफिन तैयार कर अब वह सुरेश को जगाने ही जा रही थी। वह चिल्ला पड़ा, अरे अभी तो 6 ही बजे हैं, बस तो 7 बजे की है ना, फटाफट तैयार हो जाइए, चलिए उठिए ना। सरोज ने बड़े प्यार से कहा था, लेकिन कहाँ सुनने वाला था वह। भोजनोपरांत सुरेश इंश्योरेंस बैग लेकर जाने को उद्यत हुआ। ये लीजिए, सरोज कुछ दे रही थी। क्या है? उसने पूछा। बावजूद इसके उसे रुपए दिख रहे थे, कुछ पैसे हैं आप लीजिए तो सही। सरोज ने कहा, मैं क्या करूँगा इन पैसों का, तुम्हारे पैसे हैं मैं क्यों लूँ? उसने कहा तो थोड़े गुस्से में आ गई। अलबत्ता यह मेरा तेरा क्या होता है जी, अब तो जो भी है वह सब हमारा है, ध्यान रहे। दूसरी बात, अगले रविवार को भैया हम लोगों को लेवा लेने आएंगे, शहर से कुछ जरूरी चीज़ें मंगवानी है। यार मेरे मुँह दिखाई के पैसे हैं। सरोज के कहने पर उसने पैसे तो ले लिए, फिर उसके आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। कुछ बोलो भी भाई, बस का समय हो रहा है, घड़ी की तरफ इशारा करता हुआ वह बोल पड़ा। कहाँ से शुरू करूँ, यही सोच रही थी मैं, हंसते हुए संकोच बस उसने कहा। अच्छा ऐसा करें, आप अपने लिए एक अच्छा सा पैंट शर्ट और सैंडल खरीद लेंगे, और हाँ एक 22 इंची वाला ब्रीफकेस जरूर लीजिएगा, ठीक है? तुम तो कह रहे थे कुछ चीज़ें मंगवानी है सर से अपने लिए। उसके कहने पर उसने थोड़ी नाराजगी जाहिर किया, बोल पड़ी, फिर मेरा तेरा, मैंने जो कहा आप ऐसा ही करेंगे, और हाँ लौटते समय उसी को पहन कर ही आना है, जरा मैं भी देखूँ। और उसने वाक्य अधूरा छोड़ मुस्कुरा दिया। बस ने हॉर्न देना शुरू कर दिया था। देहात का सड़क कम गड्ढे ज़्यादा, उबड़ खाबड़ गांव जवार में बस स्टॉप तो होता नहीं है। जहाँ 2-4 लोग खड़े हो गए बस स्टॉप हो गया, जहाँ हाथ दे दिया बस रुक गई। बस की चाल भी ऐसी कि साइकिल सवार बस से पहले ही शहर पहुँच जाए। सुरेश का घर सड़क से 1 मिनट की दूरी पर था। आबादी कम होने की वजह से हॉर्न की आवाज़ दूर से ही आ जाती थी। लोग बाग भी उसी हॉर्न के इंतजार पर ही रोड पर आने से पहले करते थे। बस का ड्राइवर भी भले भांति इस वाक्य से परिचित होने के कारण दूर से ही हॉर्न देता रहता था लगातार। वह रोड पर आते हुए बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। खिड़की पर बैठी सरोज बाइक का इशारा करते नजर आती, जब तक वह ओझल न हो गया। वह शाम तक ऑफिस में व्यस्त रहा। समय समाप्त होने की वजह से कुछ काम शेष रह गए थे, थक भी गया था वह। यथाशीघ्र डेरा जाना ही उचित समझा उसने। इस भागदौड़ में टिफिन भी नहीं खोल पाया था वह। डेरा पहुंचकर थोड़ी साफ सफाई के बाद टिफिन लेकर सो गया था वह। करीब घंटा भर सो लेने के बाद तरोताजा महसूस कर रहा था वह। बाजार चला गया, पैंट मैचिंग शर्ट लेकर दर्जी को दे आया, सैंडल ब्रीफकेस लेकर जब वह घर लौटा तो रात्रि के 9 बज चुके थे। आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। गांव में तो सूर्यास्त का मतलब ही होता है रात। जल्दी भोजन, फिर बिछावन पर चले जाना। पिछले 2 माह से उसकी दिनचर्या तो यही थी। शुरू में कुछ अटपटा लगा था, उसको फिर आदत में शुमार हो गया। आज जगना उसके लिए बड़ा ही दुश्वार लग रहा था। पहले तो वह भोजन बनाने का विचार कर रहा था, लेकिन नए सिरे से सारी व्यवस्था बड़ा कठिन प्रतीत हुआ तो शरबत पीकर ही सो जाना श्रेष्ठ कर समझा उसने। आज ऑफिस में कुछ काम जाते शेष नहीं रह गया था। 11 बजे तक भोजन कर ऑफिस पहुंच गया था वह। 3-4 घंटे में ही सारा काम निपट गया था। संजोग देखिए, एक नया प्रपोजल आज उसने ऑफिस में भी साइन कर लिया। थैंक्स गॉड, पिछले 2 माह से एक भी नया प्रपोजल साइन नहीं हुआ था। कमीशन पेमेंट कल करा देने का आश्वासन BM साहब ने सुरेश को दिया था। सरोज के लिए कुछ साड़ी वगैरह खरीदना चाहता था। उसके सारे काम निपट गए थे। शहर में रुकने में उसकी कोई दिलचस्पी अब शेष नहीं रही। शाम के 5 बजे बस आकर रुकी थी। अपने घर की खिड़की पर किसी के होने का आभास उसे बस की खिड़की से अपने घर को देखने पर लगा। हो न हो, सरोज ही होगी, ऐसा वह सोचने लगा। सचमुच वह सरोज ही थी। निहार रही थी रास्ते को, आगंतुक की आज संजोए बाट जो रही थी, पलक फावड़े बिछाए।
सुरेश को देखकर चांद मुस्कुराया था, पहने कपड़े को देखकर जच रहे का सिंबॉलिक इशारा किया था दूर से ही उसने। बदल दी ना आज सुरेश।

0: इसलिए वह सवालों को टालती रही, लेकिन कुछ छिपाया जा रहा है यह तो वह समझ ही चुका था। सफ़र का थकान, नई जगह और आदत, वह जल्दी ही सो गया। पौ फटते ही उसने फिर अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहा तो सरोज हंस पड़ी। आपको शक की बीमारी है क्या? वह मेरी ममेरी बहन है, हम दोनों का दीवार भी एक ही है। बहन होने के साथ साथ वह सहेली और क्लासमेट भी है। उसने मजाक में यूं ही कह दिया होगा, और कोई बात नहीं है, बदल देना। ऐसा कोई जवाब नहीं मिला उसे। जो जवाब मिला उसे वह संतुष्ट नहीं हुआ, फिर सो गया वह। दोपहर भोजनोपरांत जब वह लेटा था तो वही लड़की सरोज को ढूंढते हुए आ गई। सम्मानपूर्वक सुरेश उठकर हाथ जोड़े नमस्ते किया और पलंग के दूसरे सिरे पर बैठने का आग्रह भी। परिचय में वह उसकी साली थी, नाम था नीना। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होते रही, फिर पढ़ाई लिखाई की बात हुई। अचानक सुरेश ने मौसम, हवा आदि बदलने की बात छेड़ दी। थोड़ी देर बाद बदल देना उसके कहे शब्द का जिक्र भी छेड़ दिया। थोड़ी असहज हो गई थी बेचारी। इतने में सरोज भी आकर सुरेश के बगल में बैठ गई। नीना ने सरोज की तरफ देखा। दरअसल जीजाजी, आपकी पहचान बड़ी भाभी ने सरोज को कराई थी। आपको हमेशा कुर्ता पजामा देखना सरोज के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। थोड़ी मायूस रहने लगी थी वह। माँ, भाभी या किसी और से शेयर कर नहीं सकती थी। एक दिन दोपहर में आपको देखने के बाद वह मेरे पास दौड़कर आई थी। बड़ी ही मायूसी से इस बात की चर्चा की थी। मैं भी कुछ परेशान हो गई थी। मैंने इसकी नापसंदगी के बारे में जाननी चाही तो इसने सिर्फ ड्रेस नापसंद होने की बात कही तो मुझे हंसी आ गई। पगली, ड्रेस कोई चीज़ है? ड्रेस तो बाजार में बिकता है, वो तो आगे बदला भी जा सकता है, हमने समझाया। फिर कभी सरोज उदास नहीं हुई थी इन बातों को लेकर। आज आपको देखकर मैंने वही बात कही थी, बदल देना। दत तेरे की खोदा पहाड़ निकली चूझा। सभी हंसने लगे थे। भाभी चाय लेकर आ गई थी।
1: कथा सागर में आपने सुना अशोक कुमार वर्मा की कहानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और अब हम रुख करते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों की ओर। ये जो खबर हम देख पा रहे हैं दैनिक भास्कर के पृष्ठ पर छपी हुई है, और इसे बहुत ही प्रमुखता से दिखाया गया है कि टेंडर घोटाला मामला को जो इससे जुड़ी जो ये खबर है उसको प्रमुखता दी गई है। SVU की चार्ट शीट में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का जिक्र किया गया है। ऋषुश्री के मोबाइल में मिले हैं कैबिनेट के कई गोपनीय दस्तावेज। हस्ताक्षर से पहले फाइलें लीक हो गई थी। और EOU की कार्रवाई में अधीक्षण अभियंता के भागलपुर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अधीक्षण अभियंता ने 2 साल में 10 करोड़ की कॉमर्शियल जमीन खरीदी है। इस खबर को हमारे देख पा रहे हैं कि दैनिक भास्कर ने बहुत ही प्रमुखता दी है। CA इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो चुका है। CA में 88.55% अंकों के साथ शार्दुल ने टॉप किया है। और ये एक और खबर जो बहुत ही प्रमुखता से छपी हुई हमें दिख रही है कि परीक्षा के दिन नीट परीक्षा का जिक्र है इसमें, कि परीक्षा के दिन कॉलेज में मौजूद रहने का था PMCH और भी छात्रों को निर्देश दिया गया था, जिसके बावजूद नीट के दिन PMCH के 88 छात्र अनुपस्थित थे। इसके कारण विभाग ने इनसे जवाब मांगा है और अभिभावकों को भी नोटिस भेजा गया है। 2024 बैच के सबसे अधिक 39 छात्र अनुपस्थित थे। छात्रों के नामांकन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। और लखीसराय से जो इसी मामले से जुड़ी खबर है कि जांच अब EOU के हाथों में सौंप दी गई है। ये लखीसराय से जुड़ी घटना थी जिसमें बायोमेट्रिक कर्मी को जमानत, अदिति को अभी भी जमानत नहीं मिली है। कैबिनेट के फैसले से जुड़ी ये खबर है कि सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 1,00,000 करोड़ के लोन को मंजूरी दे दी गई है। महिला शिक्षकों को गृह पंचायत छोड़कर मिलेगी

नज़दीकी तैनाती। इससे कई सारे शिक्षकों के तबादले की जो नई नियमावली है उससे उन्हें उन्हें राहत मिलने की संभावना है। और ये जो हम देख पा रहे हैं मौसम से जुड़ी कुछ बातें भी हमारे सामने इस अखबार में देख पा रही हैं कि देश में जून में सबसे कम बारिश का जो है ये आंका गया है। अब दिल्ली पंजाब हरियाणा तक 9 दिन लेट से मानसून के पहुंचने की संभावना है। 9 दिन देरी से मानसून गुजरात व मध्य प्रदेश पहुंचा। 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन में पूरे देश में बरसेगा। तो इससे राहत हमें मिलने की संभावना है। जो चिलचिलाती गर्मी है उससे कुछ राहत तो हमें मिल ही जाएगी। और ये जो खबर है वो नगर निगम बोर्ड की तरफ से है। 7 घंटे तक बैठक चलने के बाद घंटाघर से मोक्षदा स्कूल शिफ्ट होगी फल की दुकानें। लोहिया पुल के पास बनेगा बाजार, फूड स्ट्रीट पार्किंग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। सदर अस्पताल में ओ और ए बी निगेटिव रक्त का स्टॉक खत्म हो चुका है। और सिपाही भर्ती से परीक्षा से जुड़ी जो खबर हमने पहले भी सुनी है उसके बारे में भी हम देख पा रहे हैं। अखबार में खबर छपी है कि बायोमेट्रिक कर्मी की मिलीभगत से परीक्षा में धांधली का खेल हुआ था। और भागलपुर और बेगूसराय के केंद्रों पर गड़बड़ी की तैयारी की गई थी। और अब हम रुख कर रहे हैं सुल्तानगंज के, जो कि श्रावणी मेला, जैसा कि हम जान रहे हैं कि बहुत नज़दीक है, तो श्रावणी मेला से जुड़ी खबर भी इसमें आई है कि श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी, ये ईओ का बयान है। और ये खबर हम अब चलते हैं आगे अपने खबर को बढ़ाते हैं खेल जगत की ओर। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से जो जुड़ी ये खबर है कि 79% पजेशन के बावजूद गोल नहीं कर पाया इंग्लैंड, 0-0 से खेल ड्रॉ हो गया। इंग्लैंड के सामने दीवार बना घाना। क्रोएशिया के मोर्चिड का 200वां मैच 1-0 की जीत से खत्म किया पनामा का अभियान। ये खबर है फीफा वर्ल्ड कप से। और महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में आइए हम जानते हैं। एलिस पेरी के 51 वर्ल्ड कप पारियों में पहली 50, ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 113 रन से जीत दर्ज किया है एशिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने। और ये जो हम खबर है कि बांग्लादेश 5 माह में हिंदुओं से हिंसा के 645 मामले आए हैं, जिसमें कि 95 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। और ये जो चलते चलते हम पहुंच गए हैं समाचार पत्र के आखिरी पन्ने की ओर। और इसमें जो एक अहम खबर है, खबर हमें दिख पा रही है कि अदानी समूह का फोकस AI पर है। भविष्य के मैनेजर खुद तैयार करेंगे इस चीज़ को। और ये थी आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आज का जो दिन है यानी कि 25 जून, ये बेहद ही खास है। कई सारे चीज़ें आज, अहम चीज़ें आज हुई हैं, जिसमें से कुछ नामी हस्तियों का
हम जन्मदिन भी इस दिन मना रहे हैं, जिसमें से बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं करिश्मा कपूर, जिन्हें हम सब जानते हैं, उनका जन्मदिन है आज। तो उन्हें हमारे तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनका जन्म 25 जून 1974 को हुआ था, और साथ ही साथ 25 जून 1968 को टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी जी का भी आज जन्मदिन है। तो उन्हें भी हमारे ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ। और आज के दिन वीके मूर्ति, जो कि भारतीय सिनेमा के महान छायाकार में से एक है, उनका पुण्यतिथि है। तो आज बॉलीवुड में है काफ़ी, बॉलीवुड का जो सफ़र है वो काफ़ी सुहाना है। तो बॉलीवुड में हम आज के जो आज का जो हमारा गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का जो ये फिल्म संगीत का अंक है, वे हम समर्पित करते हैं करिश्मा कपूर जी को, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो आइए सुनते हैं उनके ही फिल्म का ये एक गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम को हम अब बढ़ाते हैं आगे और आपको हम सुनवा रहे हैं ये गीत फिल्म अनाड़ी से कलाकार हैं उदित नारायण गीत समीर के हैं संगीतकार हैं आनंद मिले

इस गीत के साथ ही अब समय हो गया है आज के मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंक को समेटने का। तो अगले अंक तक के लिए आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
6: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
7: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई धुरजुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lippu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. Another news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
10: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
9: The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lippu Lake Pass in Pitoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. According to the Dharchula administration in Pitoragarh district, the first batch of Indian traders will leave for the Takla Court market in Tibet tomorrow. More from our correspondent.
3: Dharchula Subdivisional Magistrate and Trade Officer Ashish Joshi said that 26 trade passes have been issued in the first phase, including 17 traders and 9 assistants. A customs office has also been set up at Gunji to ensure the smooth conduct of trade. He said that more than 103 traders have applied for trade passes. In the second phase, another 25 traders will be granted permission. It may be recalled that the border trade between India and China was suspended in 2019-22 due to the COVID-19 pandemic. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
9: Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu will launch the country's first hub-and-spoke international air service from Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi, today. After starting this service by Air India, Varanasi will be the first spoke city to be connected to the airline's international network through Delhi. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the country's constitution was trampled over in 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. A report.
2: On this day in 1975, then-President Fakhruddin Ali Ahmad proclaimed a national emergency under Article 352 of Constitution, citing threats arising from internal disturbances. The emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. As a result, the executive assumed sweeping powers and greater central control was exercised over state authority. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. Citizens were denied the right to seek judicial remedies for violations of these rights. Pre-censorship was imposed on newspapers and even the Press Council of India, the statutory body responsible for safeguarding press freedom, was abolished. Constitutional amendments during that period barred the courts from questioning the president's decision to declare emergency and excluded the election of the Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha from judicial scrutiny. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana from today under its BRICS Chairship 2026. The two-day meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. Energy ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries will participate in the two-day meeting to strengthen cooperation in key areas. India's BRICS chairship this year is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. A federal judge has permanently barred President Donald Trump's administration from implementing most of his first executive order on elections, including a proposal requiring documentary proof of citizenship for voter registration. The ruling by U.S. District Court Judge Denise Casper in Boston effectively converts a preliminary injunction she issued a year ago, in which she temporarily blocked many of Trump's efforts to overhaul elections, into a permanent ban. Judge Casper ruled that the Constitution gives states and Congress, not the president, the authority to regulate elections, adding that Trump's requirements violated the separation of powers. International Atomic Energy Agency has said that it will carry out inspections in Iran under the country's preliminary peace agreement with the U.S. Talking to reporters in Japan, Director General of International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, said they will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The head of the Global Nuclear Watchdog said the agreement signed last week explicitly mentioned that the dilution of Iran's highly enriched uranium would be carried out under International Atomic Energy Agency's supervision. However, Iran's deputy foreign minister said access to its damaged nuclear facilities and nuclear material would only be addressed within the framework of a final deal with the U.S. In Venezuela, a

0: process, adding the new framework drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 MC1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June. The European Space Agency announced the asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth, as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shakun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खाते में और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखाधड़ी की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी से सख्ती से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में 4 बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत

0: की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए ईडीओ एफआईआर मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की जरूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
0: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरतेहाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाब को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आजादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आजादी समेत उन हकूक को खत्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। यहाँ तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आजादी के तहफ़ का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वजीर आजम लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जांच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकावत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम कर रही है जो इमरजेंसी के निफास के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकावत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
1: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तिजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपु लेक दर्रे के नजदीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली है। इंतजामिया को 103 से ज्यादा ताजिरों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाजत दी जाएगी। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लिपु लेक दर्रे तक अशिया की नकलो हमल की गरज से नबी ढांग के नजदीक खच्चरों और घोड़ों का भी इंतजाम किया गया है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो बड़े कचरों को लेके पड़ाव था जिसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: भारत चीन सरहदी तजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था लेकिन 2020 में COVID-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आकाशवाणी न्यूज देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैनुल अक्वामी फजाई खिदमात का आगाज करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वज़राए तवानाई की मीटिंग की मेजबानी करेगा। दो रोजा मीटिंग में 3 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन ममालिक के तवानाई के वुजरा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तआवुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी इख्तिरा तआवुन और पायदारी का क्याम है। देही तरक्की का महकमा आज नई दिल्ली में एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगा जो देही तरक्की में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल पर मरकूज होगी। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि मजकूरा एक रोजा तकरीब भारत के देही इलाकों की तरक्याती जरूरियात को जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात से मरबूत करने का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगी। नीति आयोग द इंडिया AI मिशन सरकर्दा सनती मुशावरती इदारे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जैसे कलीदी शराकतदार देही तरक्की को फरोग देने में मस्नूई जहानत के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के एक विफाखी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज भी शामिल है। बोस्टन में अमरीकी जिलाई अदालत की जज डेनिस कैस्पर का यह फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा उबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जनाब ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को देता है, न कि सदर को, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज के निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के तीन रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौते CETA और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिनयान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से चौथे मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के

0: दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की जरूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक्वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबार में नुमाया है। अखबार की दीगर अहम बैन अवी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी T20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
3: सभी दिवस पर सुबह 6 से रात 10 तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
2: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया गीत

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का तबादला पोर्टल आधारित या नियमबद्ध तरीके से किया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि नई नीति के तहत महिला शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड से बाहर जिले के नजदीकी प्रखंडों में होगा।
1: हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका है उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को स्वीकृति दी है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुरको से 1,00,000 करोड़ रुपए के ऋण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुरको के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद टाउनशिप क्षेत्रों में सुनियोजित अवसंरचना और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाए। कैबिनेट में कुल 45 एजेंडों की स्वीकृति प्रदान की गई। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति

0: मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संविधान हत्या दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इधर भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें कल से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में मकान या दुकान के लिए अब ज्यादा संपत्ति कर देना होगा। गौरतलब है कि विभाग ने 22 जून को बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लागू करने की स्वीकृति दी थी। संपत्ति कर में वर्ष 1995 के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए लिखित परीक्षा भी देनी होगी। बिहार लोक भवन द्वारा तैयार नियमावली के अनुसार साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा भी अनिवार्य होगी। ये परीक्षा 175 अंक की होगी, जबकि 25 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार में 13 अंक ऑन स्पॉट शिक्षण कौशल टेस्ट के लिए तय किए गए हैं। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बक्सर का अधिकतम तापमान 42.1, पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखपुरा औरंगाबाद का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इन सभी स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है।
6: दिनांक 25 जून, राज्य के दक्षिण भाग

0: के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि पर 27 जून तक पठन पाठन प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे तक ही करने का आदेश दिया है। प्रदेश में धान और गेहूं की बुआई तथा कटाई के समय विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कोई भी नया काम नहीं होगा। कृषि विभाग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक ये सुनिश्चित करेंगे कि कृषि मौसम के दौरान किसी भी ग्राम पंचायत में कोई नया काम नहीं हो। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा या असाधारण परिस्थिति में ही इस नियम में छूट दी जाएगी। प्रदेश में अगले महीने की 15 तारीख को महाकवि कालिदास की जयंती और वंदे मातरम समारोह का आयोजन होगा। कला संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में संगीत नाटक अकादमी और कला संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस दौरान देशभक्ति आधारित नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अधीक्षण अभियंता के पास विभिन्न स्थानों पर 13 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईओयू को छापेमारी के दौरान 5 लाख रुपए से अधिक नकद और लगभग 39 लाख रुपए मूल्य के आभूषण मिले हैं। वहीं विभिन्न बैंक खातों में लगभग 90 लाख रुपए की राशि पाई गई है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 29 जून से 30 सितंबर तक जंगल सफारी समेत पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। वीटीआर प्रशासन के अनुसार मॉनसून अवधि में बाघों के प्रजनन काल, वन मार्गों की मरम्मत और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने कल पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ये जानकारी दी। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मदन सहनी ने भी कल पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल बीरपुर के जवानों ने सीमा चौकी कुनौली क्षेत्र से 1,44,000 रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी के रुपए गिनने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने महिला पुलिस अवर निरीक्षक और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो जिले के अररिया संग्राम थाना का है। इधर जिले की लदनिया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अलग अलग गांव से 68 किलो गांजा जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। दैनिक भास्कर ने भरत मुठभेड़ मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, जस्टिस विनोद सिन्हा करेंगे मुठभेड़ की जांच, एसडीपीओ राजेश हटाए गए। प्रभात खबर लिखता है, उपद्रवियों को बिना वारंट नकेल कसने का डीएम को अधिकार। अखबार लिखता है, 1 जुलाई से अगले 3 महीने तक पूरे राज्य में लागू रहेगा आदेश। दैनिक भास्कर ने खेल की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, इंग्लैंड आयरलैंड में वैभव को मिलेगा अलग चेंजिंग रूम, 16 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम साझा करने की अनुमति नहीं। राष्ट्रीय सागर मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखता है, खास महल की भूमि पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। आज अखबार की शब्द

हैं, हर 3 माह में 3 पंचायतें होंगी बाल श्रम मुक्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। वीडियो वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म कन्यादान से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी, गीतकार नीरज श्रीधर और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के स्वर में। गीत आनंद बख्शी के हैं, संगीतकार हैं उत्तम सिंह और फिल्म है दिल तो पागल है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: Your feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सुनो ना।
2: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: उमंग।
0: कार्यक्रम संबंधी आवश्यक सूचना आपको बता दें, फोन इन बहनों की पसंद के रिकॉर्डिंग 25 जून गुरुवार यानी आज के दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच होनी है। जो बहनें अपनी पसंद के गीत सुनना चाहती हैं वे हमें इस दूरभाष संख्या पर फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 2400981। भागलपुर से बाहर की बहनें STD कोड 0641 लगाकर हमें कॉल करें। सूचना समाप्त हुई। युवाणी कार्यक्रम अंतर्गत फोन इन कुछ बातें कुछ गाने की रिकॉर्डिंग आज यानी कि 25 जून 2026 को समय इसके लिए आप याद रखें। ये रिकॉर्डिंग 2 बजे से 2:30 के बीच रखी गई है। युवा दोस्तों जिन्हें अपने पसंद के गीत सुनने हैं वे दूरभाष संख्या 2400981 पर कॉल करें। भागलपुर से बाहर के युवा श्रोता 0641 कोड लगाकर ही कॉल करें। दिन और समय याद रखें, आज यानी कि गुरुवार 25 जून को रिकॉर्डिंग होनी है। समय है दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 30 जून को युवाणी कार्यक्रम में। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में। गीतकार है मजरूह, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म है मेरे जीवन साथी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिवे और मुज्तबा अजीज नजा के स्वर में। फिल्म है बाजीराव मस्तानी।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज सुगम संगीत के गायक कलाकार हैं ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। प्रस्तुत है इनके स्वर में भजन।
1: सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa. ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी का गाया सुगम संगीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में। आइए इनसे सुनते हैं ये भजन।

ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी के गाए इस भजन के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म ममता से। गायिका हैं लता मंगेशकर, गीत मजरूह के हैं और संगीतकार हैं रोशन।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के सर में। गीत रचना कैफी आज़मी की है, संगीतकार है मदन मोहन और फिल्म है हंसते जख्म।

यादों की बारात। इस फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। गीतकार हैं मजरूह और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार OP नैयर और फिल्म है कश्मीर की कली।

किशोर कुमार एवं आशा भोसले के स्वर में कार्यक्रम का आखिरी गीत। गीतकार हैं अनजान संगीतकार बपे लहरी और फिल्म है शराबी।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जयप्रकाश शर्मा का नाटक अब बस भी करो। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन कुमार।
1: प्रस्तुत है नाटक अब बस भी करो। इस नाटक के लेखक हैं श्री जयप्रकाश शर्मा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार।

0: क्या हुआ? लो फिर वही धत तेरी की, तुम्हारी कोखी ऐसी है जब देखो बेटी, जब देखो बेटी, ऐसा लगता है बेटी पैदा करने की कसम खा रखी है तुमने। क्यों
1: ला दो?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं देती, नहीं देती।
0: लाओ जिद मत करो।
2: नहीं तो रहने दो।
0: अरे लाओ ना, अब इसे रख कर क्या करेंगे?
2: नहीं नहीं हे भगवान नहीं।
3: अरे ये तो दिव्यांग है, इसे ना ना नहीं, इसे नहीं मारना चाहिए।
2: क्या हुआ, रुक क्यों गए? मारो मारो मारो ना मारो, तुम्हारे हाथ तो आप भी कांप रहे हैं। ठीक ही तो है, अब तो मैं भी 45 की हो गई, जिंदगी का आखिरी सहारा भी खत्म कर डालो, तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाएगा।
3: अरे ये तो दिव्यांग है, और ये क्या सहारा देगी तुम्हें, ये तो सिर्फ जीवन भर दुख देगी, दुख, समझी?
2: तो क्या करूं, तुम तो बेटा बेटी में घटिया भेद बरतते हो ना, ये दिव्यांग भी तो तुम्हारे ही कारण हुई है। आज तक तुमने कौन सा नेक काम किया है? निर्दयता, जिंदगी में एक ही बात सीखी है तुमने, हत्या, हत्या।
3: अरे चुप भी रहेगी कि नहीं? समूचे गांव खिंडोरा पीटने का इरादा है क्या?
2: तुम हो ही इसी काबिल, और कहां से आता है बेटा और बेटी? बेटा बेटा तो सिर्फ एक कुल का गौरव होता है ना, पर बेटी बेटी तो दोनों कुल को रोशन करती है ना।
3: हाँ हाँ, बेटी तो दोनों कुल को रोशन करती है। ये ले पकड़ अपनी बिटिया को।
2: अरे अरे ऐसे कोई ऐसे रखता है कोई अपनी बच्ची को? अरे मेरी बच्ची, चुप हो जा बच्ची,
3: बेटी,
2: मेरी बच्ची।
3: अरे बेटी से क्या होता है भला,
2: चुप हो जा।
3: आदमी चाहे दर्जन भर बेटियां पैदा कर ले, कहलाएगा तो निपुत्रा ही, पुत्रवती नहीं हो सकती, समझे?
2: नहीं, यम

0: हाथों बची है मेरी बच्ची, जरूर कोई विलक्षणी ही होगी।
1: विलक्षणी कोड़ में खाज, जीवन भर किसी चौक चौराहे पर याचना ही करेगी और क्या।
0: चौराहे पर तो तुमने मुझे खड़ा कर दिया है, तुम्हारे दारू के लत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब सुहा कर डाला।
1: अरे अब बस भी करो, बस चुप रहो, ज्यादा चिल्लाओ मत, समझी।
0: दारू भांग के नाम से कितना चिढ़ते हो, जिंदगी भर चुप ही कराते तो आए हो, और कर ही क्या सकते हो तुम।
2: इस घटना के 2 साल बाद
3: गंगा किनारे देवी माँ का मंदिर कितना भव्य लगता है, मन भक्तिमय हो जाता है। घंटियों की आवाज, दूर शमशान में उठते धुएं से वातावरण शांत लगता है, लेकिन रह रहकर मन बेचैन हो उठता है। कैसा अनर्थ हो गया मुझसे कि बेटी को प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ाई, बार बार बार बार उसकी भोली सूरत आंखों के सामने छिल मिलाने लगती है। ऐसा लगता है रोती हुई बच्ची दोनों हाथ फैलाए गोद में आने को मचल रही है। सोते जागते बेचैन हो उठती हूँ, ये क्या हो गया था मुझे, जाने कैसे सोच ली कि दिव्यांग बच्ची को कहाँ कहाँ ढोती फिरूंगी। छोड़ आई कि अनाथालय वाले उठा ले जाएंगे, लेकिन अब उसके बिना अन्न का दाना भी गले नहीं उतरता। दिव्यांग ही सही है तो वो मेरे ही जिगर का टुकड़ा ना। बार बार पति के अत्याचार से डरती रही, कभी कभी बगावत भी नहीं कर पाई। छी, मैं भी कितनी कठोर बन गई थी। नहीं नहीं, अब नहीं रहा जाता, सुनते हो जी।
1: क्या तुम इतनी परेशान क्यों हो?
3: सुनो, मुझे मेरी बेटी चाहिए।
1: तो मैं क्या करूं, बेटी चाहिए, तुम ही तो उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़ाई थी।
3: उसके वियोग में मेरा मन बेचैन उठता है जी। नहीं, अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी।
1: अरे अरे अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कुसुम, उठो, पानी के छींटे मार, गाल थपथपाता हूँ। उठो कुसुम, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तुम देखो, तुम आंखें खुल गई, देखो चेहरा पोछ दूं। तुम्हें तो उल्टी सीधी बातें की थी कि मेरे जान का जंजाल है, तुम भी उसे घृणा करने लगी थी। जब जन्म देने वाली घृणा करे तो पराया ही है।
3: अरे वो वही होगी जहाँ मैं उसे छोड़कर आई थी, वो वही होगी, कौन दया करेगा उस पर, अब बर्दाश्त नहीं होता। चलिए हम उसे ले आएंगे, चलिए।
1: हाँ तो चलो ना, उठो। हाँ उठो, पता नहीं मेरा भी जी घबरा रहा है, सचमुच उसके बिना खाली खाली सा लगता है। मुझे बड़ी दया आ रही है और प्यार भी, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। हे देवी माता, पार लगाना।
3: चलिए, अब जरा भी विलंब ठीक नहीं।
1: हाँ, चलो।
3: आइए, इसी गेट से अंदर चलते हैं।
1: हाँ।
3: भाई साहब,

0: हटिए हटिए, हमें जाने दीजिए भाई साहब, आइए इधर से, आइए इधर से। अरे अरे अरे, हटिए ना भाई, हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए। पता नहीं मेरी बेटी किधर होगी। अरे माफ करना भाई, जरा जल्दी में आप है। हाँ आइए आइए, इधर आइए इधर आइए। लेकिन बिटिया कहीं दिखाई नहीं देती, आखिर आखिर किधर गई? हाँ, मैंने तो उसे इसी प्लेटफॉर्म पर छोड़ा था। अच्छा रुको रुको, मैं उस सिपाही से पूछती हूँ।
1: तुम रुको, मैं पूछता हूँ। सिपाही जी, आपने छोटी सी दिव्यांग बच्ची को इधर कहीं देखा?
2: अरे हाँ, रोज तो देखता था, पर आज कहाँ देखा है। देखो इधर उधर कहीं होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं।
0: अरे ऐसा करो, तुम उधर जाओ, मैं इधर देखती हूँ।
1: हाँ,
0: हाँ, अरे अरे, इधर तो नहीं है, उधर भी नहीं है, अब हम उसे कहाँ ढूंढे?
1: हाँ कुसुम, अब कहाँ होगी मेरी बच्ची? इधर हर जगह देख लिया,
0: कहाँ कहाँ हो सकती है मेरी बच्ची, कहाँ? अब हम उसे किधर देखे? अरे अरे, वो देखो वो देखो, उधर पिलर के पास बैठी है।
1: अरे हाँ, हाँ।
0: मैंने कहा था ना, यही कहीं होगी।
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ। हे भगवती, यहाँ देखो आशा, आशा बेटी तुम यहाँ हो, हम लोग पूरा प्लेटफॉर्म छान मारे।
1: हाँ, हाँ,
0: आओ मेरी बेटी आओ, मेरी मति मारी गई थी, ना जाने मुझे क्या हो गया था।
1: हाँ बेटिया, हाँ बेटिया, हम लोग खोज खोज के परेशान थे।
0: आओ बेटी आओ, आओ बेटी।
1: अब देखो, अब कभी नहीं छोड़ूंगा बिटिया रानी, कभी नहीं। हाँ कभी नहीं।
0: हाँ बेटी, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई।
1: आजा आजा मेरी बिटिया रानी, आजा आजा।
3: हाँ। आजा आजा आजा, आ बच्चा
1: गोद में आ गई ना, अब हंसो हंसो हंसो हंसो हंसो। अब देखो कभी रोना नहीं। गुदर गुदर गुदर गुदर, गुदर गुदर। ये देख इधर तुम्हारी मम्मी है, मम्मी के पास जाएगी, बोल जाएगी। अच्छा चलो चलो। छह बरस बीत गए, हमने कभी सोचा न था इस नगरी में फुटपाथ पर जिंदगी गुजारेंगे, भीख मांगने बैठा हूं साथ में पत्नी कुसुम और बेटी आशा भी है, कोई दाता दाने कटोरा में रुपए आठ आने डाल देते हैं और कोई अनदेखी कर चले जाते हैं, जो भी मिलते वो नसीब के हैं। अब तो लगता है हमारी सांस यही छूटेगी, यही छूटेगी।
0: गुमसुम क्यों बैठे हो, थोड़ा जुबान हिलाओ। वो कहते हैं ना, पूछे मिले रास्ता, मांगे मिले भीख। अब पेट के वास्ते तो ये करना ही पड़ेगा।
1: कुछ नहीं, बस बिगड़ी बीती जिंदगी के कारण बाकी के जिंदगी का अंजाम देख रहा हूँ। बुरे का अंजाम तो बुरा ही होता है ना, बुरे लत से बिगड़ी जिंदगी से कितना पश्चाताप होता है, बेवजह आंसू निकल आते हैं।
0: ये सब निर्दोष बेटियों के साथ यमसा रवैये का परिणाम है, तुम्हारे किए का फल मैं भी भुगत रही हूँ। चल बेटी वहाँ बैठते हैं।
4: नहीं नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी माँ, मुझे भीख नहीं मांगनी, मैं नहीं जाऊंगी, जाओ।
5: अरे तू नहीं जाएगी तो मुझे भीख कौन देगा भला? दिव्यांग पर तो लोगों को तरस आता है और रुपए दो रुपए दे देते हैं। अच्छा आ आ चल चल आजा आजा आजा बेटा, मैं अपनी बिटिया रानी को टॉफी ले दूंगी। ये देख देख देख तो टॉफी के नाम से कैसे हंसती है। आ आ आजा गोद में आजा बेटा। हाँ हाँ आजा आजा, ये हुई ना बात। आजा आजा।
4: माँ माँ मैं ना आइसक्रीम लूंगी माँ।
5: अच्छा बाबा, आइसक्रीम ही ले दूंगी। अब खुश? चल चल वहाँ पेड़ की छांव में बैठेंगे, उधर ही से तो अधिक दर्शनीय आते जाते हैं ना।
6: चाहे जहाँ भी बैठ लो, मिलेगा नसीब भर ही। अरे वो बाबा, भूखा भिखारी को रुपए दो रुपए दे दो बाबा, देवी मैया तुम्हारा भला करेगी, काम धंधे में बरकत होगा।
7: दे दो दे दो दे दो, देवी मैया के नाम पर दे दो बाबा, इस भूखी बच्ची को दे दो, दिव्यांग बच्ची है, सुबह से भूखी है, कुछ दे दो बाबा।
4: माँ देखो ना माँ, 10 बज गए, अब तो आइसक्रीम दिला दो माँ।
5: हाँ हाँ मुझे याद है बेटी, पर उसे आने तो दो।
6: आशा बेटी, कुछ नहीं मिलेगा, सारे रुपए कुड़िया बैंक में चला जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ
4: वो देखो आइसक्रीम वाला आ गया। माँ माँ देखो माँ देखो आइसक्रीम वाला आ गया।
5: ए आइसक्रीम वाले, एक देना। ये लेखा, ये तो ऐसे ही बक बक करते हैं।
4: आइसक्रीम तो बड़ा स्वादिष्ट है माँ। मैं रोज देखती हूँ ये लड़के लड़कियाँ पीठ पर बस्ता लटकाए कहाँ जाते हैं। ओह, सामने वाले स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करते हैं, कितना मजा आता होगा माँ। पर मेरे तो पैर ही नहीं है माँ, मैं कैसे जाऊंगी? खेलने में जितना मजा आता है, देखने में भी उतना ही आता है, लेकिन मेरे नसीब में ये सब कहाँ माँ? मैं भी स्कूल जाऊंगी माँ।
5: क्या कहा, तेरा दिमाग तो फिर नहीं गया है? ये पढ़ाई लिखाई अपना काम नहीं है बेटा, वो तो पैसे वालों का काम है, और तुम भीख मांगोगी कि ककारा पढ़ोगी? हमें तो पेट की चिंता रहती है।
4: देखो वे सब भी स्कूल जा रहे हैं माँ, मुझे भी ले चलो माँ, मुझे भी ले चलो।
5: अच्छा चल, आज तेरा ये भ्रम भी मैं दूर ही कर देती हूँ, चल आ गोद में।
0: स्कूल का बड़ा फाटक तो बंद है, ये यहाँ बगल में छोटा गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं।
2: अरे रे रे रे, अरे सुनो, यहाँ कहाँ चली आ रही हो? ये पाठशाला है, यहाँ भीख नहीं मिलती।
0: मुझे मालूम है गुरुजी, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं, बच्ची का दाखिला कराने आई हूँ।
2: ओ आ जाओ यहाँ मेरे पास आओ, इसे पढ़ाएगी
0: जी,
2: परंतु इसे समय पर यहाँ लाना और ले जाना पड़ेगा, कर पाएगी?
0: जी जी गुरुजी, मैं सब कर लूंगी, पर पढ़ाई के खर्चे?
2: अरे खर्चे कुछ भी नहीं लगेंगे, ऊपर से दिव्यांग को स्टाइपेंड भी मिलेगा।
0: कहीं मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं गुरुजी?
2: मजाक बिल्कुल नहीं, सब सरकार देती है, और हाँ दिव्यांग बच्चों के लिए तो खास कर।
0: चल बेटी आशा, गुरुजी से आशीर्वाद ले लो बेटा।
2: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, रहने दो, हो गया हो गया।
0: गुरुजी ये कब से पढ़ने आएगी?
2: अभी से
0: जी।
2: ये देखो, इसके अंदर स्लेट चौक और साथ में ककहरा की किताब है।
0: हाँ, मैं तो बहुत डर ही गई थी गुरुजी, कितना खर्च कहाँ से लाऊंगी, हम बहुत गरीब ठहरे ना।
2: तुमने हिम्मत तो की दिव्यांग को पढ़ाने की, इसे मेरे

0: पास बिठा दो।
1: जी जी गुरुजी, जी गुरुजी।
0: हाँ अच्छा ये बताओ, ये बचपन से है या पैदाइशी?
1: गुरुजी दोनों ही से।
0: हाँ वो कैसे?
1: इसके पिता बेटा पाने को ऐसे ऐसे कुकृत्य करते रहे, हमारी वजह से ये दिव्यांग हो गई गुरुजी। उसके दारू पीने के कारण खेत घर सब बर्बाद हो गया।
0: ओह ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ पूरे परिवार को ले डूबते हैं। छे आप निश्चिंत रहें, एक दिन यही बेटी आपके नाम को रोशन करेगी। सरकार बेटियों के लिए कितना कुछ कर रही है फिर भी बेटी पढ़ाने से कतराते हैं लोग। बेटी को बोझ समझकर अल्पायु में ही विवाह कर उनके सपनों को कुचल डालते हैं। ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो सरकार से आग्रह कर इसके लिए ट्राई साइकिल भी दिलवा दूंगा। आप जाइए जाइए, आप 4 बजे इसे लेने आ जाएंगे।
1: जी जी हाँ गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।
2: कितने साल बीत गए, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी पढ़ाई से एक परिवर्तन जरूर हुआ है। मेरे स्टाइपेंड माँ और पिताजी के छोटे कंपनी में काम से आमदनी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से जो पैसे आते हैं उससे भाड़े का एक छोटा सा कमरा एवं रसोई की समस्या का हल हो गया। मेरे पिता ने धीरे धीरे दारू से तौबा कर लिया, मेरा पारिवारिक रहन सहन अच्छा हो गया। ये सब मेरे गुरुजी की ही देन है। अब मुझे दिव्यांग होने का जरा भी एहसास नहीं होता।
3: कुसुम कुसुम
4: आई,
3: देखो ना अपनी आशा बोर्ड में प्रथम आई है।
4: क्या?
3: हाँ आजकल अखबार रेडियो और टीवी पर वही सुर्खियों में है। हाँ अखबार में तो उसकी फोटो भी छपी है।
4: देखो कहाँ है उसकी फोटो?
3: लिखा है जिला के दिव्यांग छात्रा राज्य में प्रथम आई है। देखो देखो पत्रकार भी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं।
5: कुसुम जी आपको ढेरों बधाइयाँ, आपकी बेटी राज्य में प्रथम आई है। पहला सवाल, आपको दिव्यांग बेटी को पढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से मिली जबकि शुरू में आप भीख मांगकर गुजारा करती थीं?
1: जी इसका सारा श्रेय उसके गुरुजी श्री प्रदीप्त घोष को जाता है। उन्होंने ही सारे रास्ते दिखाए, उन्होंने सरकारी योगदान दिलाने में मदद की। मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी।
5: आशा हम आपसे जानना चाहेंगे आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं?
2: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ जिससे लोगों में ये संदेश बांट सकूं कि बेटियों को भी शिक्षित करें, तभी देश आगे बढ़ेगा और घर घर खुशहाली छाएगी।
5: बहुत खूब, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: आप रो रहे हैं? क्यों? अच्छा अब समझ में आया, ये पश्चाताप के आंसू हैं या जिस संपत्ति को शराब की आग में झोंक दिया था उसे पाने की खुशी के हैं? इसी खुशी में आप रो रहे हैं ना?
6: नहीं कुसुम, मैं क्यों रो रहा हूं ये तो मुझे भी पता नहीं, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि जिन बेटियों को मैंने खोया है क्या वो अब मिल पाएगी? नहीं ना, एक दिव्यांग बेटी पढ़ लिख कर इतना सब कर सकती है तो वो सारी बेटियां पढ़ लिख कर क्या

0: कुछ नहीं कर जाती। कितना बड़ा पाप किया है मैंने, कितना बड़ा पाप किया है मैंने। ओह भगवान, हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। हाथ हाथ भी नहीं कांपते थे मेरे। यहां यहां कोई तो मुझ हत्यारे को सजाते पाता, सजाते पाता। मृत्यु का तांडव, कुकृत्य लीला और बेटियों का शोषण। कोई कोई सजा देता, कोई तो सजा देता। बहुत हो गया, बहुत हो गया। परंतु परंतु मैं अपने आप को सजा जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा।
1: आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। खून का बदला क्या खून से लिया जाता है? ये तभी संभव है जब मशाल उठाकर जंग छेड़े, जब एक दिव्यांग बेटी इतना कुछ कर सकती है, तो देश की बेटियां क्या नहीं कर सकती? अगर आप समाज की एक बुराई को सुधार पाएं, तो घर घर समाज की बुराइयों में सुधार होने लगेगा।
0: सचमुच सचमुच कुसुम, हमारे बिटिया ने हमें नया जीवन दिया है। हाँ, मेरा प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब जब मैं हर बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, इसका प्रचार प्रसार करूंगा। तभी तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा, हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हाँ, यही हमारा लक्ष्य होगा कुसुम, यही हमारा लक्ष्य होगा।
2: दस साल बाद दिव्यांग आशा अपनी मेहनत और मजबूत इरादे के दम पर आज डॉक्टर आशा बन गई है।
3: मैडम, अंदर आ सकती हूँ?
4: अरे माया जी, आइए आइए, कैसी हैं?
3: जी मैम, अच्छी हूँ, आप?
4: मैं भी। अच्छा, वो आपकी पड़ोसन, क्या नाम है उसका?
3: सीमा।
4: हाँ हाँ, वो आई थी, आज ही उसे डिस्चार्ज किया है, उम्मीद से अधिक स्वस्थ हो गई है वो।
3: अच्छा
4: अच्छा, ये कौन है?
3: ये मेरी पड़ोसन सुकन्या है, 3 बेटियां हैं, ये फिर पेट से है, कहती है बेटी नहीं चाहिए, समझाइए इसे।
4: सुकन्या, घबराओ नहीं, मुझे तुम अपनी बहन समझो, मैं समझती हूँ। नया मेहमान चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी हत्या मत करो, उसे आने दो। देखो देखो, मेरी माता के इसी तरह के प्रयास को मैं भुगत रही हूँ। ये देखो देखो, मेरे झूलते पांव, मेरी भी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था, अब बस भी करो बहना, बस करो। देखो, जच्चगी यहीं कराना, और अगर लड़की हुई फिर देखना मैं उसे क्या बनाती हूँ। ये देखो, तीनों नर्स आज खुद पर खड़ी हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे सहयोग में समर्पित कर दिया है। हर माँ ऐसा करने लगे तो पृथ्वी नारी विहीन हो जाएगी, सारी सृष्टि थम सी जाएगी।
3: अरे ये क्या कहा मैडम आपने, देखिए कैसे रोने लगी।
5: नहीं माया दीदी, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा।
4: नहीं नहीं नहीं सुकन्या, ये क्या कर रही हो, मेरे पांव छोड़ो सुकन्या।
5: नहीं मैम, मैं बहुत बड़ा पाप करने वाली थी, आपने आपने बचा लिया। अब मैं भ्रूण हत्या का विरोध करूंगी, मैं भ्रूण हत्या का विरोध करूंगी, मैं इस हत्या का विरोध करूंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री जयप्रकाश शर्मा द्वारा लिखित नाटक अब बस भी करो। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय: भानु, संजय कुमार, कुसुम, अणिमा कुमारी, बच्ची आशा, अर्पिता रॉय, डॉक्टर आशा, सुरभि, गुरुजी, अरुण कुमार झा, पत्रकार इस्माइल अंसारी, माया, संगीता कुमारी मिश्रा, सुकन्या कुमारी जयश्री, और सिपाही की भूमिका में थे मोहम्मद जियाउर रहमान। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार। ये नाटक आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक अब बस भी करो। इसके लेखक थे जयप्रकाश शर्मा और निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया कुशल प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना बॉर्डर टू फिल्म से, आवाज़ें थी सोनू निगम और साथियों की। अब आइए सुनते हैं आशी तितोरिया का गाय गीत, फिल्म है अथर्व।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: चेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से, और प्रोग्राम का अगला गीत अरिजीत सिंह और हंसिका पारिक की आवाजों में फिल्म है आजाद।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन इन बहनों की पसंद की रिकॉर्डिंग 25 जून गुरुवार यानी आज दिन के 1:30 बजे से 2 बजे के बीच होनी है। जो बहनें अपनी पसंद के गीत सुनना चाहती हैं वे हमें इसी समय अवश्य कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 2400981 और भागलपुर से बाहर की बहनें STD कोड 0641 लगाकर कॉल करें। सूचना समाप्त हुई और कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं अरमान मलिक का गाया गीत, फिल्म है दे दे प्यार दे 2।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
1: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
1: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
2: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं,
1: तो जरूर सुनिए
0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
3: अरिजीत सिंह और अरमान खान का गाया गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म है धुरंधर।

0: अदनान निज़ामी और साथियों का गाया। अब ये कव्वाली सुन रहे थे और जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सूफियाना गीत संगीत पर। प्रोग्राम को आगे भी जारी रखेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: स्टूडियो की घड़ी में 11:40 और पूरे 45 सेकंड। प्रोग्राम चल रहा है गुलदस्ता और अगला सूफियाना गीत है। इससे पहले कहते हैं कि आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा, इतना मायूस ना हो खलबत गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा।

दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं सूफियाना गीत, और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी जानकारी इसी से वाबस्ता यानी सूफीवाद से हम आपको देते चलें। दोस्तों, सूफीवाद या तसव्वुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है, और इसके पंथियों को ही सूफी यानी सूफी संत कहते हैं। इनका लक्ष्य अपने पंथ की प्रगति एवं सूफीवाद की सेवा रहा है। सूफी राजाओं से दान उपहार स्वीकार नहीं करते थे और सादगी भरा जीवन बिताना पसंद करते थे। इनके कई तरीके या घराने हैं, जिनमें सोहराबर्दी, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, कलंतरिया और शुद्दारिया प्रमुख है। दरअसल इस शब्द की उत्पत्ति सफा यानी पवित्र शब्द से हुई है, अर्थात ईश्वर का एक ऐसा भक्त जो सभी सांसारिक बुराइयों से मुक्त हो। कुछ लेखकों ने सूफी शब्द को सफा यानी दर्जा से जोड़ा है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप में भगवान के साथ पहले दर्जे का संबंध रखता हो।

दोस्तों, माना जाता है कि सूफीवाद इराक के बसरा नगर में करीब 1000 साल पहले जन्मा राबिया अल अहमद मंसूर हल्लाज जैसे शख्सियतों को इनका प्रणेता कहा जाता है। ये अपने समकालीनों के आदर्श थे, लेकिन इनको अपने जीवन काल में आम जनता की अवहेलना और तिरस्कार झेलनी पड़ी। सूफियों को पहचान अल गजाली के समय सन 1100 से ही मिली। बाद में अत्तार, रूमी और हाफिज जैसे कई श्रेणी में गिने जाते हैं। इन सबों ने शायरी को तसव्वुफ़ का माध्यम बनाया। भारत में इसके पहुंचने की सही से समयावधि के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 12वीं और 13वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाकायदा सूफीवाद के प्रचार प्रसार में जुट गए थे।

0: मित्रों, इस सूफियाना कलाम के साथ ही समाप्त होने को है हमारा आज का कार्यक्रम गुलदस्ता। और हम आपको एक बार फिर से बता दें, आज का यह कार्यक्रम केंद्रित था सूफीवाद और गीत संगीत पर। और इसके साथ ही हमें दी अनुमति, नमस्कार। अभी आपने सुना फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता, ये आकाशवाणी भागलपुर है। 12 बजे हैं, भाई सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम नारी लोक, प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।
1: बहनों नमस्कार, मैं रागिनी स्वागत करती हूं आप सभी का आज के नारी लोक कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं बहनों कि हमारा देश अपनी विविध रीति रिवाजों और संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं को विशेष सम्मान और आदर देने की परंपरा रही है। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी सुरक्षा का दायरा बहुत ही व्यापक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए ये कहना गलत होगा कि हमारे देश की महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, खासकर जब वे अकेले बाहर जाना चाहती हों। हम सभी के लिए ये शर्म की बात है कि हमारे देश की महिलाएं भय के साए में जी रही हैं। ये जरूरी नहीं कि महिलाओं पर अत्याचार देर शाम या रात में ही हो, बल्कि परिवार के सदस्यों या कार्यालयों में जहाँ वो काम करती हैं उनके बीच भी असुरक्षा के मामले सामने आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा का स्तर लगातार गिरना समाज में अपराधों की निरंतर होती वृद्धि हो सकती है। अगर इन अपराधों की सूची बनाई जाए तो वो बहुत ही लंबी है, जैसे एसिड अटैक, यौन हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अपहरण, ऑनर किलिंग, भ्रूण हत्या, मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि। हालांकि इन अपराधों से निपटने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई तरह के कानून मौजूद हैं, पर बहुत कम प्रतिशत की महिलाओं तक अपने इन अधिकारों की पहुंच है। इन अधिकारों में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, शिक्षा, काम और समान वेतन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार शामिल है। इसके अतिरिक्त और भी अधिकार हमारे देश की महिलाओं को प्राप्त है, जिनमें कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अधिकार, सुरक्षित गर्भपात का अधिकार, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी अधिनियम आदि। पर बहनों, प्रश्न ये नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं को कितने कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न ये है कि देश की कितनी महिलाओं को इनकी जानकारी है और कितनी महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। निश्चित ही बहुत अल्प संख्या में महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी है। जिन्हें है वो भी यदि इस दिशा में अपना कदम बढ़ाती हैं तो समय पर उन्हें सही न्याय नहीं मिल पाता, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है। इसलिए केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है, इसका सख्ती से पालन हो, साथ ही हर महिला तक इसकी जानकारी हो, ये आवश्यक है। इसके लिए सरकार के साथ साथ हम महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, तभी हम एक सुरक्षित वातावरण में सांस ले पाएंगे। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं बहनों और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
7: मैं डॉक्टर दत्तात्रेय मजुमदार MBBS जनरल फिजिशियन कटिहार से बोल रहा हूं। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह अस्थमा, साइनस की समस्या, कान में संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। इसे डॉक्टर एलर्जिक मार्क्स कहते हैं। इसलिए एलर्जी का समस्या इलाज कराना बहुत जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर्स से बचे और डॉक्टर के सलाह लें।
6: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
1: अंतराल के बाद बहनों, अब आइए सुनते हैं कहानी। कहानीकार हैं आभा पूर्वे।

तुम ही बाजार से घर के सामान ले आओ। मन उखड़ने सा हो गया। चुपचाप झोला उठाया और चेहरे पर एक तनाव लिए घर से बाहर निकल गई। गनीमत यह था कि बाहर निकलते ही जान पहचान का रिक्शा वाला मंटू मिल गया, जिसने मुझे देखते ही कहा, बाजार जेबो की मालकिन, चलो पहुँचाए दे छियो। आय हड़ताल छेनी, भोरे से कोई पैसेंजर ने मिल लो छे। मेरे चेहरे पर खुशी झलक आई थी। पता नहीं हड़ताल में कोई और रिक्शा मिलता या नहीं। मुस्कुराती हुई रिक्शे पर बैठ गई थी। बाजार पहुंचने के लिए मील भर तो कम से कम चलना ही था। खालीपन को भरने के लिए मैं कुछ बात शुरू करती ही कि इसके पहले ही रिक्शा वाला बोल पड़ा, आपने सुना मालकिन, बीरो बाबू नहीं रहे। मंटू अब अंगिका की जगह हिंदी में बोलने लगा था। यह नई बात नहीं थी, कोई गंभीर बात होती तो वह हिंदी में ही बतियाता था। बीरो बाबू के नहीं रहने की बात सुनकर मेरे मुंह से जैसे चीख सी निकल पड़ी थी, क्या कह रहे हो मंटू? सच ही कह रहा हूँ मालकिन, ना जाने अब उनकी तीन तीन बेटियों का क्या होगा। कितना मानते थे वे अपनी बेटियों को, और बेटियां तो जैसे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी। लेकिन उन्हें हुआ क्या था, मैंने उससे पूछा था। इस पर उसने बिना मेरी ओर देखे उसी तरह रिक्शा खींचते हुए कहना शुरू किया था, सो तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन खुदनिया माए है ना मालकिन, वही आज सुबह बोल रही थी कि बीरो बाबू और उनकी पत्नी सुगनी के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी दो दिन पहले। लेकिन किस बात के लिए मंटू? मंटू मेरी बात सुनी या ना सुनी पता नहीं, वह तो सारे जैसे सारी बातें बता देने के लिए व्याकुल हो रहा था। वह बोले चला जा रहा था, मालकिन यह भी कोई बात हुई कि पति कमाऊ नहीं है तो पत्नी उस पर रौब करे? जमाना कितना बदल गया। ठीक है कि बीरो बाबू की पत्नी वकील है, नामी वकील, एक केस का 25,000 से कम नहीं लेती है, लेकिन इसका क्या मतलब है, पति को चपरासी समझे? वैसे बाबू एकदम बेकार तो नहीं थे, बाइंडिंग का काम करते थे, अच्छी कमाई थी, कम से कम दिन में 300 रुपये तो कमा ही लेते होंगे। उन्हीं पैसों को जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया था, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया था। और देखिए उस दिन उनकी पत्नी ने ही बीरो बाबू को कह दिया, आप क्या समझते हैं यह घर आपसे चलता है? मैं दिन भर कचहरी में बहसें करती हूँ, उससे यह घर चलता है। इस घर में पलंग या सोफा सेट या करीने की रसोई घर या साज सज्जा या झालरदार पर्दे क्या समझते हैं, आपकी बाइंडिंग वाली कमाई से आई है? यहाँ तक कि यह जो शाम को आप मेरे साथ बाबू साहब की वेशभूषा में निकलते हैं उसमें भी मेरी कमाई लगी हुई है। मंटू ने मेरी ओर देखते हुए कहा था, बोलिए मालकिन, सुगनी मालकिन को ऐसा कहना चाहिए था? ठीक है बहुत कमाती है, लेकिन घर तो पति पत्नी की कमाई से ही चलता है। घर में आकर दोनों की कमाई कम बेस थोड़े ही रहती है, दोनों की कमाई घर आकर

0: दूध पानी की तरह एक हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने यह बात बीरो बाबू को कह दी तो वह तो जैसे पत्थर बन गए। यह बात सुने में कहीं होती तो कोई बात नहीं, यह बात खुदनिया माँ जब वहाँ कुछ मांगने गई थी तब कही गई थी। आप तो जानती हैं मालकिन कि खुदनिया माँ का उस घर में आना जाना आम है। उस घर के बिना उसका काम भी नहीं चलता, आखिर क्यों ना हो। जब तक बीरो बाबू के पिताजी जीवित रहे खुदनिया माँ को देते लेते ही रहे। अब लोग चाहे जो कहें उसके बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने इसे कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखा। अब जब खुदनिया माँ उस जमाने से इस घर में आते जाते रही है तो कौन सी बात उसकी आँखों से बच पाई है। और उस दिन उसने जो कुछ बताया उसमें झूठ तो हो ही नहीं सकता। मालकिन फिर झूठ ही क्यों बोलेगी। इसी ने सुदीन को बताया था कि मैं थोड़ा सा आटा मांगने बीरो बाबू के यहाँ गई थी, शायद आटा घर में नहीं हो इसी से उन्होंने पचटकिया मेरे हाथ में रख दिया था और कहा था जा दुकान से आटा खरीद लेना, मालकिन घर में नहीं, आटा निकाल कर कौन देगा। बस यही बात सुगनी को अखर गई थी और सुगनी के सामने ही बीरो बाबू की एक भी इज्जत नहीं रखी थी उसने। यह कहते कहते मंटू एकदम काट हो गया था। मैंने देखा उसने अपने सर को आकाश की ओर एक क्षण के लिए उठाया था और एक गहरी सांस ली थी और फिर सर को एकदम नीचे कर लिया था। मुझे इस कहानी में कोई रुचि नहीं थी। मैं क्या, पूरा मोहल्ला इस बात को जानता है कि बीरो की माँ को सुगनी के बारे में कुछ कुछ पता चला था, लेकिन बीरो की माँ की जिद हार गई बीरो बाबू के पिताजी के जिद के सामने और शादी हो गई थी। सुगनी थी तो बहुत गरीब घर के, उस समय बीरो की बाइंडिंग वाली दुकान शहर भर में नामी थी, जिसकी कमाई से उसका घर ही नहीं चलता था। सुगनी की वकालत भी पूरी हुई थी, फिर वकील बनते ही उसका मिजाज भी बनता गया था, जिस मिजाज के कारण घर भर में हर कोई एक भूचाल महसूस कर रहा था। लेकिन मंटू तुमने यह तो नहीं बताया कि आखिर वीरो को हुआ क्या था, क्या उसने नींद की गोलियां ले ली थी, क्योंकि उसको इसे लेने की आदत थी। मेरे कई बार मना करने के बावजूद वो नींद की गोलियां लेता रहा। उस दिन ज़्यादा गोलियां ले ली होंगी और फिर नींद में ही रह गया होगा। नहीं मालकिन, ऐसी कोई भी बात नहीं, ना उसने नींद की गोली ली और ना गले में फसली लगाई थी। इन दिनों जो भी उन्हें देख रहा था उसे लगा कि वह बीमार चल रहे हैं, और सचमुच ही बीमार ही चल रहे थे। किसी शारीरिक रोग के कारण बीमार नहीं थे, बल्कि अपनी पत्नी की बातों से आहत होकर के बीमार लग रहे थे। लेकिन यह भी कोई बात हुई कि किसी बात से आहत होकर जान ही दे दे। कल की बात है, एकदम भोरे भोर कटवा ट्रेन में जाकर कट गए। लोगों ने जाकर देखा, वहाँ वीरो बाबू नहीं, बाल्टी भर खून था और उनके लाश की बोटियाँ इधर उधर छितराई हुई। इतना कहते ही मंटू ने रिक्शा रोक दिया और सीट से नीचे उतरते हुए कहा, अब आगे नहीं जा सकूँगा, मुझे ख्याल आया कि हमारी कन्याएं काम से घर लौट आई होगी। वह अस्पताल में नर्स है, वो तो मेरे लिए नौकरी तक छोड़ सकती है मालकन। आज बड़ी बिटिया का जन्मदिन है और 4 बजे ही आने को कहा था। मैंने मंटू की बातों का विरोध नहीं किया था। पर्स से पैसे निकालकर उसे देने लगी तो उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब जगह पर न पहुँचलिए तो किराया कथिक है। इतना कहते ही उसने रिक्शे को घुमाया और सीट पर बैठ पैडल को पैरों से दनादन घुमाते हुए आँखों से ओझल हो गया था। मेरा मन ऐसा व्यथित हुआ कि मैं अपने फ्लैट की ओर लौट पड़ी।
1: अभी बहनें सुन रही थी कहानी, कहानीकार थी आभा पूर्वे। अब आइए सुनते हैं कुमारी ज्योत्सना से काव्य पाठ।

कविता है रिश्ते। स्वार्थी सब लोग हैं मतलबी संसार, स्वार्थी सब लोग हैं मतलबी संसार, मुट्ठी भर रिश्ते हैं चुल्लू भर प्यार, मुट्ठी भर रिश्ते हैं चुल्लू भर प्यार। यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया से सबको हो गया है प्यार, सबको हो गया है प्यार। भंग हो गई शांति मन की, भंग हो गई शांति मन की, और भटक गए हैं विचार, और भटक गए हैं विचार। भाग दौड़ की दुनिया है महंगाई बेशुमार, भाग दौड़ की दुनिया है महंगाई बेशुमार। दिखावे और आडंबर से घिरी हुई दुनिया सारी, घिरी हुई दुनिया सारी। धैर्य सहन शक्ति भी नहीं, धैर्य

से आगे बढ़ने को तैयार, आगे बढ़ने को तैयार। ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा में लोग खो गए इतने, ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा में लोग खो गए इतने। भर कर दिलों में नफरत, भर कर दिलों में नफरत, रिश्तों को भी छोड़ गए, रिश्तों को भी छोड़ गए। संस्कारों के उत्सव को

0: है, देखना ही सही है, ऊंच नीच समझाना बेईमानी सी हो गई है, ऊंच नीच समझाना बेईमानी सी हो गई है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: अभी बहनें कुमारी ज्योत्सना से काव्य पाठ सुन रही थी। अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

गीत के बाद बहनों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार।

ये था भानु को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करता थी श्री पार्वती के। हम आकाशवाणी भागलपुर से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए उमंग।

अजीत नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से, रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन
आशी

0: शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजुभाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम।
1: हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है।
0: गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे

0: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
0: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है

0: और मैं काम कर रहा हूँ, उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं।
1: जी।
0: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है।
1: जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है?
0: जी, और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति?
0: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
0: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी, इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति?
0: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम। गायिका है रूपा सिंह। इनसे पहले सुनिए शिव भजन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा प्रखंड आलमनगर जिला मधेपुरा जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाढ़ इलाका है कोसी कटाव से पीड़ित है वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं 10 से 15 पक्की सड़क मैं दो बार मुखिया बनी हूँ।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अब ये सुनते हैं लोक भजन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: लोकरंग कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं रूपा सिंह के गाय लोकगीत। हम आपको बता दें इस कार्यक्रम को आप पुनः प्रादेशिक समाचार के बाद सुन सकेंगे। और प्रादेशिक समाचार के लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण में।

0: with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों की दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के चैप्पन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल। नव प्रशिक्षित जवानों के लिए दीक्षांत सलामी। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक। तस्करी रोकने के लिए डाक, कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम। बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। और रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश। मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय और संविधान पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि इस दौर ने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को उजागर किया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति का 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैपन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव प्रशिक्षित आरक्षियों के दीक्षांत पासिंग आउट परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जांबाज जवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नए जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सीख दी। धनबाद के कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई।
3: 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर, चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, आयुष्मान 5 लाख रुपया निशुल्क इलाज का मामला हो, उजला गैस सिलेंडर देना हो या फिर घर घर नल जल लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से बाहर हो, यात्रा 2047 तक चलाते रहनी है।
1: रांची में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने वन्य जीव तस्करी रोकने के लिए हवाई, रेल, सड़क मार्गों समेत डाक व कुरियर सेवाओं पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों से आपस में सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित करने को कहा। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए विमान पतन पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए हैं। हवाई अड्डे के आसपास विशेष रूप से बिरसा चौक और हीनू क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचने वाले अनाधिकृत केंद्रों और बुच्चड़ खानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पक्षियों को आकर्षित होने से रोकने के लिए नगर निगम को खुले नालों को जल्द ढकने और ऊंची इमारतों पर अवरोधक लाइटें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के मुरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से आज युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक विशेष जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। पर्यटन और खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने आगाह किया कि नशा आज युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है जो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है।
4: अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर झारखंड में शुरू की है। यह हर कदम इस बात का संकल्प है कि झारखंड को हम मादक पदार्थों से बचाकर रखेंगे और साथ ही साथ अपने झारखंड को बेहतर सशक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
1: दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड की गोविंदपुर पंचायत में किसानों ने सामूहिकता से समाधान की एक अनूठी मिसाल पेश की है। दो गांवों के किसानों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर जेसीबी मशीन की मदद से जल निकासी नाली को साफ कराया है। इससे क्षेत्र के करीब 150 बीघा जमीन से जल जमाव की समस्या दूर हुई है और 6 वर्षों के बाद यह भूमि दोबारा खेती के योग्य बन सकी है। किसानों के इस सामूहिक प्रयास को पूरे जिले में सराहना हो रही है। राज्य सरकार ने बोकारो जिले के चंदन कियारी स्थित पर्वतपुर और सीता नाला कोल ब्लॉक के खनन पट्टा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा दी गई इस स्वीकृति से दोनों ब्लॉकों के विशाल क्षेत्र में खनन गतिविधियां शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं में खुशी का माहौल है।
5: चंदन कारी ने दो कॉल ब्लॉक खोला, एक पर्वतपुर एक सीतानाला। तो सीतानाला में जो रहते हैं जमींदाता हैं उनको भी उसी रूप से नौकरी मिलेगा जिस रूप से यहाँ पर कॉल ब्लॉक में मिलना है। इसमें पिछला एक साल हमारा काफी मेहनत की है हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही योगदान है और उनके योगदान के तहत ही आज कॉल ब्लॉक का स्वीकृति हुआ है जिसमें हमारा सीतानाला भी एड हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 500 अंक की उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,25,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही उमस भरी गर्मी के बाद आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज गर्जन और हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए रांची, खूंटी, बोकारो और रामगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों में तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन और तैराकी प्रतियोगिता का समापन हो गया। छत्तर मांडू इंदौर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में विधायक ममता देवी, उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के जैप वन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल, नव प्रशिक्षित जवानों की ली दीक्षांत सलामी। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक, तस्करी रोकने के लिए डाक कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम। बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश। मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। अंत में इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं सामा चकेबा। गायिका हैं रूपा सिंह।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिसा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: संदेश के पूर्व आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम।

0: भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला करके और बिहार पर हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
3: मैं डॉक्टर दत्तात्रेय मजुमदार MBBS जनरल फिजिशियन कटिहार से बोल रहा हूँ। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो ये अस्थमा, साइनस की समस्या, कान में संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। इसे डॉक्टर एलर्जिक मास्क कहते हैं, इसलिए एलर्जी का समस्या इलाज कराना बहुत जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर्स से बचे और डॉक्टर के सलाह लें।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
4: लीजिए सुनिए धारावाहिक गंगा की सुरताल की 8वीं कड़ी। लेखक हैं अशोक अंचल और प्रस्तुतकर्ता दशमती छतर तथा अशोक शरणा।

0: बनारस से बहती हुई गंगा प्रयाग में पहुंचकर यमुना और सरस्वती की धाराओं से जब एकाकार हो जाती है तो नदियों का यह समागम संगम के रूप में जाना जाता है।
1: प्रयाग या इलाहाबाद केवल गंगा यमुना सरस्वती के संगम के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि साहित्य, संस्कृति और राजनीति का भी एक ऐसा संगम स्थल है जहां भारतवर्ष के प्रसिद्ध विद्वान, मूर्धन्य साहित्यकार और महान राजनेताओं ने जन्म लिया
0: और जिनकी कृतियों और नीतियों ने संपूर्ण विश्व में भारत का परचम लहराया।
1: इस प्रयागराज का महत्व धार्मिक या पौराणिक मान्यताओं से तो है ही, इसका महत्व बौद्धिकता, दर्शन और ज्ञान के लिए भी जगत प्रसिद्ध रहा है।
0: ऐसे तीर्थराज प्रयाग की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और राजनीतिक महत्ता को नमन करते हुए हम अपने धारावाहिक गंगा के सुरताल में गंगा यमुनी संस्कृति की स्वर लहरी और सरस्वती की वीणा की झनकार का एक अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहे हैं,
1: जिसमें इलाहाबाद की अवधी बोली की मिठास भी है, गंगा के प्रति श्रद्धा भक्तिभाव का समर्पण भी है, ताना भी है, उलहना भी है, यानी गंगा के पानी का रंग अवधी के लोकगीतों के कई रंगों में कुछ इस तरह रंग जाता है।

0: जीवन की उलझन और परेशानियों के बोझ से दबा हुआ इंसान जब कहीं कोई सहारा नहीं पाता है तो वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ इसी तरह गंगा से प्रार्थना करता है।
1: जनमानस का यही विश्वास गंगा के साथ इस गहराई से जुड़ा है कि प्रयाग के लोगों के हर सुख दुख में गंगा कभी दोस्त, कभी सहेली, कभी देवी तो कभी ममतामयी मूर्ति बन जाती है।
0: जैसा कि हम गंगोत्री से ही गंगा की प्रकृति देखते आ रहे हैं, इसका स्वभाव जीवनदायिनी और पालनकर्ता के रूप में ही स्थापित रहा है।
1: वो एक विश्वास है, अवलंब है, श्रद्धा है, भक्ति है, जिस पर भारतीय जनमानस की आस्था और निष्ठा इस तरह टिकी है कि उसे लगता है जैसे उसकी प्रार्थना आराधना से प्रसन्न होकर गंगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी।
0: अवधि के लोकगीत में एक सुहागन अपनी गोद भरने के लिए गंगा की प्रार्थना कुछ इस तरह से करती है।

0: ये इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती के उस संगम स्थल पर बसा है जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि अमृत से भरा कुंभ लेकर जाते हुए विष्णु से कुंभ की कुछ बूंदें छलककर पृथ्वी पर पड़ी तो ये बूंदें प्रयाग हरिद्वार नासिक और उज्जैन की भूमि पर गिरी जिससे उस जगह की धार्मिक महत्ता और अधिक बढ़ गई।
1: कालांतर में चार स्थलों पर विशेष तिथियों में लगने वाले कुंभ के मेले ने प्रयाग हरिद्वार नासिक और उज्जैन को विश्व प्रसिद्ध बना दिया।
0: श्रद्धालुओं के मन का ये विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से कई तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है और जीवन का कल्याण होता है। कुछ इस भाव से भरा है ये गीत।

0: तीर्थराज प्रयाग में बहती गंगा के प्रति असीम आस्था और भक्ति का जन सैलाब कुंभ और अर्ध कुंभ में उमड़ पड़ता है। इसके अतिरिक्त अवधी, भोजपुरी, बघेली और बुंदेली बोलियां भी लोक भाषा में ऐसे घुल मिल गई हैं कि भाषाई संगम का एक अनूठा दृष्टांत उपस्थित करती हैं।
1: ऐसी ही भाषाओं से रचा बसा ये लोकगीत गायिका की विरह वेदना की अंतरंग कथा है। नायिका गंगा को अपनी पीड़ा बताते हुए कहती है,

0: पर्यटकों के लिए भी प्रयाग में ऐतिहासिक महत्व के कई ऐसे स्थान हैं जो उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। सन 1583 में अकबर द्वारा निर्मित सुदृढ़ किला मुगलों की वास्तुकला का नायाब नमूना है।
1: प्रयाग की ये गंगा इस जनपद के अनेक गांवों की उपजाऊ भूमि में अमृत बनकर उतरती है और किसानों की फसलों में मोती बनकर उपजती है।
0: चाहे किसान हो, मछुआरा हो या नाविक, सभी की आजीविका की डोर गंगा से बंधी है। तभी तो गंगा में पहली बार अपनी जीविका के लिए नाव उतारने वाला नाविक हाथ जोड़कर अपनी और अपनी नाव की रक्षा के लिए गंगा से कुछ इस तरह प्रार्थना कर

0: सच कहा जाए तो हिमालय से चलकर बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली गंगा केवल नदी नहीं है, बल्कि वो भारतीय संस्कृति और संस्कार की संवाहक भी है।
1: गंगा की तलहटी में हीरे मोती भले ना हों, पर उसके जल में श्रद्धा और विश्वास की अनमोल निधि छिपी है, जो न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में अस्तित्व की एक पहचान बनाती है।
0: इसीलिए इस बहती हुई गंगा के दर्शन का सुख हर कोई पाना चाहता है। तीर्थों के तीर्थराज प्रयाग और प्रयाग की गंगा, गंगा की त्रिवेणी और त्रिवेणी का संगम, ये सभी कुछ लोगों को इस तरह सम्मोहित करता है।

0: युग बदलता है, जमाना बदलता है। गंगा की धारा भले न बदले, मगर किनारे बदल जाते हैं।
1: हमने देखा है कि गंगा जितनी पावन, पूजनीय और श्रद्धेय मानी जाती है, वो उतनी ही प्रदूषित और उपेक्षित भी होती रही है।
0: कभी वो दूर पतली धार में बदल जाती है, तो कभी उफन कर किनारा छोड़ देती है। ये सब गंगा में बहती गंदगी और बढ़ते हुए प्रदूषण का प्रभाव है।
1: इस ओर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि गंगा की भी अपनी पीड़ा है, विवशता का दर्द है।
0: गंगा समस्त जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आई और निरंतर संजीवनी की तरह यहाँ प्रवाहित रही है।
1: गंगा की यही स्थिति लोक कवि को भीतर तक कचोटती है और कवि ने व्यंग भरे इस गीत में कह डाला।

0: हम इस गीत के साथ केवल गंगा के सुरताल की बात नहीं कर रहे, हम तो गंगा की वर्तमान स्थिति पर एक सामूहिक चिंतन का गंभीर विषय भी छेड़ रहे हैं।
1: इस पर भारतीय जनमानस को सोचने विचारने की जरूरत है, ताकि गंगा को सृष्टि के आखिरी पड़ाव तक ले जाने का संकल्प पूरा किया जा सके।

0: देशातो ना।
1: इस कार्यक्रम में पारंपरिक ढोलक, हारमोनियम, रगड़ी, करताल तथा एक तारा वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है।
2: इन सभी गीतों के कलाकार हैं रविशंकर, श्रीकांत, महेंद्र, किरण, शशि, रागनी तथा आश्रया।
1: मोमेंटस प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत गंगा के सुरताल की इस कड़ी के तकनीकी सहयोगी हैं दासमती चार्टर, अशोक शरण, नारायण साहू तथा कुमार गिरी।
2: तो श्रोताओ, अविरल बहती रहे देश में गंगा की जलधार
1: और गूंजते रहें गगन में गंगा के सुरताल।
2: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। हर हर गंगे, गंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गंगा के सुरताल की 8वीं कड़ी। लेखक थे अशोक अंचल और प्रस्तुतकर्ता दसमती छत्तर तथा अशोक शरण। ये आकाशवाणी भागलपुर है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
7: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलम नगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए हैं। अभी तो मेरा बाहर इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं दो बार मुखिया बनी हूँ।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था, जब सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा संविधान के सम्मान और जन स्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं आपातकाल विरोधी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना स्थित उनका आवास 1975 में आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, जहां लोकतंत्र की बहाली को लेकर रणनीतियां बनाई जाती थीं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई थी। श्री झा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी नामक युवक की मौत के मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के डीआईजी सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस ने जांच अभियान के दौरान 47 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों हुए दुष्कर्म की घटना के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
10: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की याद दिलाता है, जब मुल्क में आइनी हकूक और जमहूरी कदरों को पामाल किया गया था। इस मौके पर मुल्क और रियासत में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आयन पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत की हिफाजत करने वाले सेनानियों को याद किया। इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला सम्राट चौधरी और मरकजी वजीर जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को एजाज से नवाजा गया। इधर बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के मौके पर 6 जुलाई तक पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर इमरजेंसी की मुखालफत करने वाले सेनानियों को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में इमरजेंसी एक सियाह बाब था, जब इक्तदार के नशे में जमहूरी इदारों, इजहार राय की आज़ादी और शहरी हकूक को संगीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत, आयन का वक़ार और आम लोगों की आवाज़ की ताकत को हमेशा सबसे ऊपर रखना ही जमहूरियत के सेनानियों के तईं खिराज अकीदत है। वहीं इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक के सरफहरिस्त लीडरों में से एक सिक्किम के साबिक गवर्नर गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना वाकई उनकी रहायशगाह 1975 में तहरीक का अहम मरकज था, जहां जमहूरियत की बहाली के लिए हिकमत अमली बनाई जाती थी। आकाशवाणी से बातचीत में जनाब प्रसाद ने कहा कि इमरजेंसी जमहूरियत और शहरियों के हकूक पर बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इजहार राय की आज़ादी पर काबू पाया गया और अपोजिशन के लीडरों और कारकुनों को जेल में बंद कर दिया गया। जनता दल यू के कौमी कारगुजार सदर संजय झा ने कहा कि 25 जून हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए लगाई गई इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन के लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। जनाब झा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक की क्यादत की थी और साबिक वजीर आला नीतीश कुमार भी उस तहरीक के दौरान जेल में रहे थे। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के तहत बिलौटी गांव में गुज़श्ता दिनों हुए मुबैना इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के मामले की अदालती जांच शुरू कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट के सुबुकदोश जज विनोद कुमार सिन्हा की सदारत में तश्कील कमीशन ने आज सुबह जाय वारदात का दौरा किया। जनाब सिन्हा ने मुतासरा खानदान के लोगों और गाँव वालों से बात की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, जिला मजिस्ट्रेट तनय सुल्तानिया, पुलिस सुपरिटेंडेंट राज समेत दिगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में शदीद गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर दर्ज हरारत 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा, जहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, पटना, नालंदा और गया समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में लू की हालत बनी रहेगी। वहीं महकमा ने रियासत के शुमाली हिस्सों में बेशतर मकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया ज़िले के फुलकाहा थाना इलाके के तहत भारत नेपाल सरहद के पास पुलिस ने जांच मुहिम के दौरान 47 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय ज़िले के चकिया थाना इलाके के तहत गुज़श्ता दिनों हुए आबरू रेजी के मामले में पुलिस ने दो मजीद मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
11: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
12: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान

0: लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेल्बर्ट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
7: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
8: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:30 बजे हैं। पेश है फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: चलते चलते, ये है अगले गीत के लिए फिल्म का नाम, गायक कलाकार सुखविंदर सिंह।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, और प्रोग्राम का अगला नगमा गोपी किशन फिल्म से, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

लता मंगेशकर और कृति कुमार का गाया गीत आप सुन रहे थे राधा का संगम फिल्म में। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए जिद्दी फिल्म का गाना हरिहरन और चित्रा की आवाज़ों में।

इस आखिरी गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का चित्रपट से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, पेश है तरंग कार्यक्रम, फनकार हैं चंदन दास। प्रोग्राम का आगाज़ इब्राहिम अश्क की लिखी गज़ल से।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर प्रखंड डोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लबेड़ी खोले हैं जिच्छा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे

0: चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं, तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: मैं डॉक्टर दत्तात्रेय मजुमदार MBBS जनरल फिजिशियन कटिहार से बोल रहा हूँ। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह अस्थमा, साइनस की समस्या, कान में संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। इसे डॉक्टर एलर्जिक मास कहते हैं, इसलिए एलर्जी का समय से इलाज कराना बहुत जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर्स से बचे और डॉक्टर के सलाह लें।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: तरंग कार्यक्रम में समय आप सुन रहे चंदन दास की गाई गजलें। प्रोग्राम की अगली पेशकश इसरार अंसारी के कलाम से।

तरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई गजलें। हम आकाशवाणी भागलपुर से बोल रहे हैं। समूह स्वर में सुनिए देशभक्ति गीत।

समूह स्वर में आपने सुना देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब से संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और शाम 5 बजे से आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम। विविध भारती के कार्यक्रम के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है, पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक बरांडे तक गूंजते हैं।
1: बिल्कुल, उसकी बहुत सारी छेड़छाड़ होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको,
0: बड़ा हो गए, बड़ा हो गया हमारा बेटा, बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो,
1: कई बार कुछ कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया, कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष,
0: ज्यादा अमीर हो गई हो, ये भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक गाना सुनवाते हैं।

0: मनमानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4

0: होते हैं तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं। और फिर शादी बीत जाती है, लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में और आ जाती हैं जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
1: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गईं, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
1: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारे। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
0: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होता है शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे, सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे, रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी, वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी, 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी, अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना, मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही है, पर वे मुस्कुरा कर रह गई और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए, आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं, वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं, कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया, मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: इस तरह की शिकायतें भी होती है कि देखो उनकी शादी में गए थे वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो, जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
0: है। रिश्तेदार जो जाते हैं मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्मों रिवाज का ख्याल रखना।

0: तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको एक हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
0: अमूमन ऐसा होता है।
1: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले
0: सुनते

0: भाई ममता जी शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है, सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद भी होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी के संगीत

0: हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी अभी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे

ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, कि हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और पौधों पर कीट लग जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें, और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से, इसका घोल बना लें, और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है, क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है, उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे
0: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, और जो सप्लाई चेन है, जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं, वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
0: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं, तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन है वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए, और समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके, इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
0: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चूड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है, चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंटा नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर ले और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को श्रोतन को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम झिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टो में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है।
0: और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात।
1: नहीं
0: है।
1: वो तो वैसा है कि काम चलता रहता है, भारतीय विभाग में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन नहीं लगता हमारा, जो सुबह हुआ कि हम सीधा वेद भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है,
1: सभी लोग सुनते हैं फिर हम तो, ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमलता जी का गाया गुताना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम बाबू जी।
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है, जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
0: बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है, मन चाहेगी।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी सुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान मैं भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई,

0: बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई, ये है मेरे गाने के बोल।
1: क्या
0: और
1: बात
0: भाई और
1: है।
0: अंतरा सुनाया।
1: अच्छा, जो
0: जी हाँ जी
1: लिखते
0: हाँ,
1: हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
0: सूफियाना, जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, एक ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने ते कमला कोई कोई।
1: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली
0: जी
1: मुलाकात
0: हाँ
1: में
0: जी हाँ
1: फिर
0: जी हाँ
1: आपसे
0: जी
1: कोई
0: हाँ।
1: नया गीत सुनेंगे, बताइए।
0: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है, उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, शारदा सपेन, क्या है? नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी। हाँ। लड़के की भेष में रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी है, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछें सब हो गई हैं, तो लोग बात जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित तो गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मल्लिक का संगीत है। गीत के बोल हैं, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नि जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही। तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी,
0: बताइए गजराज जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा आप करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती। तो
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी, जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बहापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने की दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कर रही तुम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं,
0: आप जवाब देते हैं उसका।
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे अमृत भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितनी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। जो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी आड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ा संजय डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, क्यूट हो गया हमको, रेडियो सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है, इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करे तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे इधर।
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है ऐसे तो, हमारे गांव

0: के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
1: क्या बात है, पोहे और समोसे।
0: यस,
1: मुंह में पानी आ गया हमारे। देखिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी, आप गाना बता दीजिए।
0: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ।
1: फिल्म का नाम क्या है?
0: मुद्दत।
1: मोहम्मद अजीज की आवाज
0: जी।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त संध्या और हाजिर हूं आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम युववाणी के साथ। साथियों, मैं आशा करती हूं कि आप सभी हमारी ही तरह स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्यरत होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आपके उज्ज्वल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की इसी कामना के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, आज के कार्यक्रम के दिन विशेष में हम जानेंगे संविधान हत्या दिवस के बारे में। उसके बाद साप्ताहिक स्तंभ ओबी यानी कि आउट ब्रॉडकास्ट में हम हमारे युवा साथियों से युवाओं में बढ़ती नशे की लत के विषय पर बात करेंगे। उसके बाद स्तंभ इतिहास दर्पण में आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं को जानेंगे। उसके बाद स्तंभ समसामयिकी में हम जानेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स। इस बीच हम लुत्फ उठाएंगे ढेर सारे गीतों का। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं एक गीत फिल्म बॉम्बे से। इस गीत की गायिका हैं चित्रा।

वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट रेडियो शो युवाणी में। साथियों, अब वक्त हो गया है दिन विशेष में संविधान हत्या दिवस के बारे में जानने का। प्यारे साथियों, भारत का संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार प्रदान करता है। संविधान केवल एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा का प्रतीक भी है। जब संविधान में निहित मूल्यों और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है तब उसे संविधान की भावना के विरुद्ध माना जाता है। भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण करने का निर्णय लिया। यह दिन वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद दिलाता है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित किया गया था जिसके दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई और अनेक राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। संविधान हत्या दिवस का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं को लोकतंत्र और संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा किसी भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह अवसर हमें संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः दृढ़ करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए सतत सजग रहने की प्रेरणा देता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम संविधान में निहित आदर्शों का सम्मान करें तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। साथियों, दिन विशेष में संविधान हत्या दिवस के बारे में आज बस इतना ही। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक गीत फिल्म वीर जारा से, जिसे अपने मधुर सुरों से संजोया है सोनू निगम और लता मंगेशकर ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
7: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर फिरदौस आलम है, एंटी मेडिसिन सिटी मुंगेर बिहार से बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी सी समस्या समझते हैं, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सर में दर्द हो सकता है और ये काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल कर सकता है। कुछ लोग को सही से सांस ना ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह समय पर सही इलाज करें। धन्यवाद।
6: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर while prepared with care. Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
8: प्यारे साथियों, अब वक्त हो गया है साप्ताहिक स्तंभ ओबी का, तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वीकली सेगमेंट ओबी में हम सुनते हैं हमारे युवा साथियों को।

0: विषय पर जो केवल युवाओं के नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। विषय है युवाओं में बढ़ती नशे की लत। आज के दौर में युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन जब यही युवा नशे जैसी बुराई के गिरफ्त में आने लगते हैं तो इसका असर उनके भविष्य और परिवार, समाज आदि पर भी पड़ता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ तीन युवा दोस्त मौजूद हैं, सुमित कुमार मिश्रा, प्रेम कुमार केडिया और आदर्श कुमार। आप तीनों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं सुमित जी से बात करना चाहूँगी। सुमित जी, आप एक युवा हैं और छात्रों के बीच रहते हैं। आजकल युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को आप किस तरह से देखते हैं?
1: जी धन्यवाद। मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है। अगर मैं अपने आसपास के माहौल की बात करूं तो ये समस्या पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ती हुई दिखती है। कई बार युवा सिर्फ जिज्ञासा में या दोस्तों के दबाव में नशे की शुरुआत करते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आदत लत बन जाती है। आज सोशल मीडिया का प्रभाव भी बहुत अधिक है। कुछ फिल्मों, वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट में नशे को स्टाइल और आधुनिकता के रूप में दिखाया जाता है। कई युवा इसे देखकर प्रभावित हो जाते हैं और बिना परिणामों को समझे उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके अलावा पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगी परीक्षाओं की चिंता, करियर की अनिश्चितता और पारिवारिक समस्याएं भी युवाओं में तनाव बढ़ाती है। कई बार वे तनाव से राहत पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन सच ये है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह केवल एक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। मैंने अपने आसपास ऐसे युवाओं को देखा है जिनकी पढ़ाई, करियर और पारिवारिक रिश्ते नशे की वजह से प्रभावित हुए हैं। मेरा मानना है कि युवाओं को अपनी समस्याएं परिवार, दोस्तों या शिक्षकों के साथ साझा करनी चाहिए। खेल, संगीत, योग और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में सफलता मेहनत और अनुशासन और सकारात्मक सोच से मिलती है, ना कि नशे से। जी शुक्रिया।
0: बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की सुमित जी। अब हम अपने दूसरे युवा साथी प्रेम जी से बात करेंगे। प्रेम जी, समाज पर नशे का क्या प्रभाव पड़ता है?
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम है और मैं बीएन कॉलेज का छात्र हूँ। नशे का प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो इसका सेवन करता है। जब कोई युवा नशा की गिरफ्त में आता है तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है। समाज पर भी इसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। नशे की लत के कारण कई बार अपराध, हिंसा, चोरी और सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि कई प्रतिभाशाली युवा अपने सपनों के लक्ष्यों से भटक जाते हैं। आज जरूरत है इसी बात की कि हम केवल आलोचना न करें बल्कि युवाओं को सही दिशा दिखाएं। उन्हें सही माहौल, रोजगार के अवसर, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना होगा। जब युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा तो वो गलत रास्तों से दूर रहेंगे। समाज, परिवार और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर युवाओं को सहयोग करना चाहिए ताकि वो नशे जैसी चीज़ों से दूर रहे। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर विचार प्रेम। अब हम अपने तीसरे युवा साथी आदर्श कुमार की ओर बढ़ते हैं। आदर्श, आप युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाना चाहेंगे?
3: नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैं भागलपुर बिहार के महादेव सिंह कॉलेज से हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, नशे की लत केवल एक आदत नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या है। रोकथाम के लिए परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता को बच्चों के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। उन्हें बच्चों की भावनाओं और समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल डांटने या डराने से समस्या का समाधान नहीं होता। विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। युवाओं को नशे के दुष्परिणाम की सही जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे इसके खतरे को समझ सकें। इसके साथ ही युवाओं को खेल, संगीत, साहित्य, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। यदि कोई युवा पहले से नशे की लत का शिकार है तो उसे शर्मिंदा करने के बजाय चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सहायता लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही उपचार, परिवार के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से नशे की लत से बाहर निकाला जा सकता है।
0: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, यह केवल जीवन को कठिन बनाता है। युवाओं को अपने सपनों, अपनी प्रतिभा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे युवा अतिथि सुमित कुमार, प्रेम कुमार और आदर्श कुमार ने अपने विचारों के माध्यम से हमें यह बताया कि नशे से बचाव और जागरूकता की इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान क्या है। वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट रेडियो शो युववाणी में। साथियों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और साप्ताहिक स्तंभ इतिहास दर्पण में हम जानते हैं आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 1975 में भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। वर्ष 1947 में प्रसिद्ध पुस्तक द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पहली बार प्रकाशित हुई, जो बाद में विश्व की सबसे प्रसिद्ध आत्मकथात्मक पुस्तकों में शामिल हुई। वर्ष 1993 में किम कैपविल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। साथियों, इतिहास दर्पण में आज बस इतना ही। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक गीत फिल्म माय नेम इज खान से राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज़ में।

वेलकम बैक साथियों, अब वक्त हो गया है स्तंभ स्तंभ सामयिकी का। तो आइए स्तंभ स्तंभ सामयिकी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स। साथियों, मदर डेयरी ने भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल दूध पाउच लॉन्च किया है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और फ्रांस ने भारत इनोवेट्स 2026 पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए E0FIR प्रणाली को बढ़ावा दिया है। इससे ऑनलाइन अपराधों की शिकायत दर्ज करना आसान होगा। साथियों, समसामयिकी में आज बस इतना ही। अब आप अपने रेडियो दोस्त संध्या को दीजिए विदा। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए जोश, नए हर्षोल्लास और ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातों के साथ। नमस्कार।

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म घायल से लिया है। लता मंगेशकर एवं पंकज उधास ने इसे गाया है। गीत के बोल अनजान के हैं और संगीतकार हैं बप्पी लाहड़ी।

कुमार सानू एवं साधना सरगम को अब आइए सुनते हैं फिल्म दामिनी में। गीतकार समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

कुमार सानू एवं अलका याग्निक को अब आइए सुनते हैं फिल्म गैर में। गीतकार समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अलका याज्ञिक एवं कुमार सानू का गाया फिल्म छुपा रुस्तम का एक नगमा। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियाँ कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर प्रयास से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा महिलाओं में कमर दर्द। 6:40 पर रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायक कलाकार होंगे भोले शंकर झा। 7:20 पर कार्यक्रम गांधी कथा में आप सुनेंगे डॉक्टर विजय कुमार की वार्ता, विषय होगा गांधी और सरकारी तंत्र। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे चेतन कुमार चौबे। 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल गायिका होंगी सांत्वना साह। 11:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं गुलदस्ता। 12:00 महिला श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होता है नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे आप उमंग। दिन के 1:00 लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कल गायिका होंगी किरण पाठक। 1:30 ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा घर आंगन। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। अपराह्न 3:00 मीडियम वेव 205.76 अर्थात 1458 पर हमारा प्रसारण संपन्न होगा। FM 100.1 और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5:00 हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत। शाम 6:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार की वार्ता, विषय होगा तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे डॉक्टर अजय राय। रात 9:30 आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग शंकरा में। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6:00 हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: स्वागत है श्रोताओं आपका इस प्यारे कार्यक्रम में। सबको किशन का नमस्कार
1: और सबको लाखों का भी नमस्कार। किशन भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार लाखों भाई, सुनाइए और सब क्या हाल समाचार हैं?
1: हाल समाचार सब कुशल मंगल है।
0: चकाचक चकाचक
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मौसम जो है अभी गर्मी का है, कभी बारिश भी हो जाती है बीच बीच में
0: जी,
1: लेकिन गर्मी से लोग जो है कि काफी परेशान हैं और ये प्रकृति है, बदलते ही रहती है
0: जी जी।
1: और इसमें जब बारिश होती है
0: जी,
1: तो निश्चित रूप से इस गर्मी के बाद बारिश से धरती में, धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं
0: जी,
1: वो लहलहा उठते हैं। किशन भाई
0: बिल्कुल, ये पारितंत्र हैं लाखों भाई
1: बिल्कुल।
0: और इस प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, परिवर्तनशील है, उत्थान पतन प्रकृति के नियम हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समय परिस्थिति जो भी हमारे सामने आते हैं उसको देखते हुए, समझते हुए, समझदारी के साथ अपने सारे नित्य क्रिया कर्म करने हैं और इसी में तरक्की करनी है, इसी में प्रगति करनी है, इसी में जो साधन या हमारे पास जो संसाधन है उसी में बेहतर करें और अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ थोड़ा देश व समाज के तरक्की का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है
1: बिल्कुल।
0: और देखिए अभी एक बात हम अपने श्रोताओं के समक्ष भी रखना चाहते हैं, हालांकि अपने बातचीत के माध्यम से वो जुड़े ही रहते हैं
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह होता मुझे समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से हमने बहुत तरक्की किए हैं, शहरीकरण के कारण चीजें बहुत बदली भी हैं। एक समय ऐसा भी था कि बरसात के समय में लाखों भाई कुएं में पानी बराबर भर जाता था, बड़ा आनंदित होते थे, बड़ा खुशी होती थी उस समय कि अब बाल्टी से पानी भरना नहीं पड़ेगा, डंडा नहीं बराना पड़ेगा, ओभन बाल्टी नहीं लाना पड़ेगा, इस तरह की सोच होती थी। बल्कि बाल्टी छोटा बाल्टी है, एकदम धपाक से कुइयां में डाले, उठाए, नहा लिए, गदगद गदगद, जहां दो बाल्टी नहाया उधर चार बाल्टी नहा लिए,
1: बिल्कुल।
0: तो समय की बात है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए चीजें इतनी तेजी से बदले हैं कि आज पानी के लिए लोग पानी पानी हो रहे हैं
1: बिल्कुल।
0: कई क्षेत्रों में तो परिस्थिति ऐसी है कि दूर दराज से लोग कम से कम पीने का पानी भी लाते हैं सामान्य क्रियाकलाप के लिए, तो अभी भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लोग काम चला लेते हैं, लेकिन
1: बिल्कुल,
0: पानी पीने की जो बात होती है बड़ी दिक्कत है
1: बिल्कुल। किशन भाई देखिए एक कहावत है
0: जी,
1: जल ही जीवन है
0: बिल्कुल,
1: और यह कहावत अक्षरशः सत्य भी है
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मानव शरीर लगभग 60% पानी से बना है
0: बिल्कुल,
1: और इसके बिना मनुष्य अधिकतम 3 से 5 दिन तक ही जीवित रह सकता है
0: जी जी।
1: तो जल मानव जीवन का मूल आधार है
0: जी,
1: जिसके बिना किसी भी जैविक क्रिया, कृषि या सभ्यता की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल प्रमाणित बात है लाखों भाई, बिल्कुल प्रमाणित है। ऐसे में निश्चित रूप से अब देखिए एक समय लाखों भाई ऐसा होता था जब शहर छोटे थे, गांव थोड़ा छोटा पड़ता था, तो उस समय जो पानी पर्याप्त मात्रा में होते थे, बल्कि बारिश वगैरह के पानी जो ज़मीन में जाता था, सोखता था ज़मीन,
1: बिल्कुल,
0: तो वो पानी का जो जल स्तर था वो बड़ा ही बरकरार रहता था।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी पक्कीकरण एक जो चिंता की बात है, हर जगह गली टोला मोहल्ला गांव घर हर जगह, खैर पक्कीकरण, पक्की सड़कें बनना, पक्की नालियां बनना, ये विकसित समाज की निशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रूप में हम देखते हैं कि जल का शोषण भी हम कह सकते हैं कि हो रहा है, जल का
1: दोहन भी
0: हो रहा है,
1: हम लोग कर रहे हैं,
0: ऐसा कह सकते हैं। कई एक बार देखने में ऐसा लगता है जहां एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है वहां 5 बाल्टी खर्च कर लिए
1: बिल्कुल,
0: तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी है ना। अब देखिए कि कई क्षेत्रों में लाखों भाई ऐसा है कि जो आधुनिक मशीनें हैं जमीन के अंदर से जल निकालने की जो व्यवस्था है, कहीं कहीं जगह पर सुनते हैं कि वो भी फेल हो जा रहे हैं।
1: हाँ।
0: बड़ा आश्चर्य लगता है, चापाकल कुएं और नलकूप तो दूर की बात हो गई है।
1: बिल्कुल देखिए किशन भाई
0: जी,
1: पानी के बिना शरीर का तापमान भी नियंत्रित नहीं रह सकता
0: जी,
1: और पाचन क्रिया रुक जाती है
0: जी,
1: और उसके क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो जहरीले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
0: जी,
1: वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते
0: जी
1: हैं।
0: जी,
1: और इसके साथ ही खाद्य और कृषि उत्पादन भी पूरी तरह से जल पर ही निर्भर है
0: जी। अभी देखिए लाखों भाई, ये तो खैर बिल्कुल प्राकृतिक बात है, शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की तरफ से ऐसा विशेष प्रयास है कि समाज में हर जगह पीने का पानी उपलब्ध हो सके।
1: बिल्कुल, देखिए
0: बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम शुरू की है, केंद्र सरकार की तो बातें हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: तो आने वाले दिनों में जल की जो उपयोगिता है, निश्चित रूप से जल है तो जीवन है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: ताकि हमारे घर तक जल आ सके। कार्यक्रम में और भी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे अपने श्रोताओं के साथ, गीत संगीत भी सुनवाएंगे, जानकारी की भी बातें हम करेंगे। बढ़िया से देवी गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: जी बिल्कुल
1: और लाखों भाई, आज जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, खास
0: बिल्कुल
1: करके आज के परिप्रेक्ष्य में जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, आज भी वहाँ पर संसाधन की थोड़ी कमी है। तो सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, तो बेहतर से बेहतर कार्यक्रम लाने का प्रयास करती है, और उस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से हम समाज के लोग बेहतर तरक्की कर सकते हैं, या ऐसी आवश्यकताएं जो कि हम व्यक्तिगत रूप से नहीं पा सकते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो सरकार ऐसा प्रयास करती है अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं
0: उनका
1: वहाँ
0: लाभ
1: तक
0: मिल
1: भी इस
0: सके।
1: योजना से लाभ हो सके। वैसे
0: बिल्कुल
1: ग्रामीण विकास में दूरसंचार क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इन सब बातों की चर्चा के लिए कामेश्वर प्रसाद शर्मा अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, आइए हम लोग भी इनके बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लाखों भाई,
0: बिल्कुल रहा है, और भारत को यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगात्मक स्थान प्राप्त करना है तो इसे इस क्षेत्र में तीव्र विकास करना होगा। भारत विश्व के सर्वाधिक बड़े दूरसंचार तंत्रों में से एक का संचालन करता है। इसमें टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से होने वाला संचार सम्मिलित है। विश्व स्तरीय दूरसंचार आधार संरचना के अस्तित्व प्रावधान देश के त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास की कुंजी है। भारत में टेलीग्राफ और टेलीफोन आविष्कार के तुरंत बाद ही दूरसंचार सेवाएं आरंभ हो गई। पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच 1851 में संचार हेतु खोली गई। दूरसंचार मूल संरचना की पहचान राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण औजार के रूप में की गई है। यह न केवल संचार नेटवर्क के माध्यम से देश के लोगों को जोड़ता है, अपितु यह वैश्विक संपर्क और अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। भारत का दूरसंचार नेटवर्क विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और एशिया की उभरती अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय जनसमूह के लिए इंटरनेट बुनियादी मूल संरचनात्मक आवश्यकता बनता जा रहा है। यह लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में गहरी पैठ बना रहा है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा वे किसी भी विषय पर किसी भी समय और किसी जगह से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत की। ट्राई की स्थापना दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी परिस्थिति का सृजन और पोषण करने के लिए की गई है जो भारत को वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में संपर्क तथा समर्थ बनाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत परिवेश प्रदान करना है जो घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए सामान्य कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ट्राई ने समय समय पर अनेक विनियमन आदेश और दिशा निर्देश जारी करते आ रहे हैं जिसमें व्यापक विषय शामिल है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 का संशोधन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किया गया। संशोधन अधिनियम के द्वारा एक अपीलीय न्यायाधिकरण जो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय ट्रिब्यूनल TDSAT कहलाता है की स्थापना सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार के क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। इस प्रकार से देश का व्यवस्थित विकास समुचित सुनिश्चित किया जाता है। इसे लाइसेंस देने वाले और लाइसेंस धारक के बीच किसी विवाद का अधिनिर्णय का अधिकार दिया गया है। दूर संचार उद्योग द्वारा किया गया ऐसा त्वरित विकास संचार तथा सरकार की समर्थक और उदार नीतियों और निष्पक्ष विनियामक ढांचा द्वारा

ऐसा बनाया गया है जो खरीद सकने लायक कीमतों पर भारतीय उपभोक्ताओं को दूर संचार सेवाएं मुहैया कराता है। आर्थिक सुधारों के साथ इस क्षेत्र में मुख्य परिवर्तन हुआ है। पहले जिसमें किसी एक का एकाधिकार था, वह अब प्रतिस्पर्धा मंच बन गया है और विश्व भर में निजी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। नई दूरसंचार नीति द्वारा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखा गया है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सुपर पावर बनाना है और देश में विश्व स्तरीय दूरसंचार मूल संरचना का विकास करना है। यह ऐसा माहौल बनाने पर बल देता है जो इस उद्योग में लगातार निवेश आकर्षित करने में समर्थ बनाता है। विभिन्न देशों के मध्य सिमटती दूरियों का एक प्रमुख कारक दूर संचार प्रौद्योगिकी एवं संचार की बढ़ती भूमिका है। देश में हुई सूचना क्रांति से ग्रामीण जनजीवन में भी बदलाव आया है। अब ग्रामीण महिलाएं भी घूंघट से बाहर आकर कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करने लगी है। सूचना क्रांति से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। ई शासन ने रही कही कसर को पूरा कर दिया है। ई शासन ने जहां आज जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर पा रहा है, वहीं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई दिशा मिली है। इससे जहां ग्रामीण विकास को नया आयाम मिला है, वहीं ग्रामीणों को शासन प्रशासन की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाती है। बदलते भारत की गूंज भारतीय भूगोल को लांग चुकी है। बदलाव के बयार को पूरी दुनिया स्वीकारने लगी है। संचार क्रांति ने जो बदलाव की गति को और तीव्र कर दिया है, गांव में बसने वाला भारत अब ई क्रांति का अग्रदूत बनने की राह पर है। व्यवस्थागत संपूर्ण जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करने की योजना बनाई है। इसी योजना के आलोक में प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक की पूरी शिक्षण प्रणाली को डिजिटल किया जा रहा है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति जहां शिक्षा के प्रारूप और पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव पर जोर दे रही है, वहीं डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलकर तकनीक तौर पर सशक्त समक्ष समाज को तैयार करना है। सर्वांगीण विकास के लिए डिजिटल इंडिया एक क्षेत्रीय प्रोग्राम है जो न केवल जनोपयोगी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक वितरण का मार्ग प्रशस्त करता है, वरन ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म कर पब्लिक डाटा के संग्रहण से भारत को डिजिटल ब्लूप्रिंट के रूप में सूचनाओं को आमंत्रित भी करता है। संग्रहित सूचना के अन्वेषण और तकनीकी उपयोग की अपार संभावनाओं के मध्य आज ऐसे कई स्मार्ट एप्लीकेशन बन रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं, विनिमय, यातायात आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव लाने में सक्षम है। परंतु इस क्रांति को आत्मसात करने में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, जो अभिशाप बन ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा से अलग रखे हुए है। लेकिन निकट भविष्य में भी ये सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भारत सरकार का डिजिटल इंडिया ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने करोड़ों का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गांवों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड जोड़ने का लक्ष्य है और सरकार की योजना 2018 तक यह लक्ष्य पाने की है। इन पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने पर 70,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है। साथ साथ 2.25 लाख आईटी पेशेवर तैयार करने का लक्ष्य भी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने
इलेक्ट्रॉनिक

0: स्किल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है जो देश के लोगों को सरकार से सीधे जोड़ने में मददगार होगा। देश के 55,000 गांव को अगले 5 वर्षों में मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी। ई क्रांति सेवाओं से किसानों के लिए रियल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना है। गांव शहर के बीच डिजिटल गैप कार्यक्रम के जरिए भारत और इंडिया के बीच का फर्क मिटाना है। इससे ग्रामीण एवं शहरी सभी लोगों को समान रूप से डिजिटल सेवाओं का फायदा मिलेगा। सरकार BSNL को नए सिरे से कदम बढ़ाते हुए 1.5 करोड़ नए कनेक्शन का लक्ष्य दी है, जो 2019 तक हर गांव में टेलीफोन सेवा पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही ट्राई ने भी 2020 तक तेज इंटरनेट सेवा घर घर पहुंचाने की योजना बनाई है। सरकार चाहती है कि हर पंचायत इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जुड़े और स्थानीय लोगों को इसका उचित लाभ मिल सके। तकनीकी हमेशा से नवयुग में प्रवेश का माध्यम रही है, इसलिए जैसे जैसे ग्रामीण भारत संचार सूचना से जुड़ता जाएगा, भारत में ज्ञान का उत्पादन बढ़ता जाएगा और एक बार पुनः हम वैश्विक स्तर पर अपना ज्ञान पताका फहरा पाएंगे।
1: बड़ी अच्छी बातों की जानकारी दिए कामेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने, और निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अब देखिए कैशलेस की भी बात कर लीजिए, एक समय था कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाते थे और अभी तो बैठे बैठे इधर का माल उधर चला गया, उधर का इधर आ गया, चीजें सरल और मिनटों में लाखों का कारोबार। तो निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश में भी
2: विकास बहुत हुआ है।
1: जी जी बिल्कुल, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आधुनिकीकरण की जो बात होती है,
2: और आजकल के इस तकनीक के दौर में जब कि हमारे पास कंप्यूटर इंटरनेट सेवा है
1: जी,
2: तो पूरी दुनिया एक तरह से गांव बन गया
1: जी,
2: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कर लो दुनिया मुट्ठी में जो कहते हैं ना जी। सुंदर, बड़ी अच्छी बातों की जानकारी रही। और प्रकृति में श्रृंगार भी बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े रोमांच करने वाला भी होता है। अब देखिए इस गर्मी के बाद इस चिलचिलाती धूप में कभी तेज धूल भरी आंधी भी आ गई, और उसके बाद जो तेज मूसलाधार बारिश होती है लाखों भाई, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने इस सुंदर से बगिया को नहला दिया हो। हाँ। उसके उस श्रृंगार की भी अलग सुंदरता है।
2: बिल्कुल,
1: बढ़िया से एक श्रृंगार गीत सुनते हैं।

0: करती मैं करे छे श्रृंगार।
1: बिल्कुल सिंगार गीत के बाद देखिए केशन भाई
2: जी,
1: धरती माय करे के सिंगार
2: जी,
1: इतने अच्छे गीत सुनने के बाद निश्चित रूप से हमारे श्रोता जो है कि और कार्यक्रम में ऐसे ही गीतों की आनंद लेंगे
2: हैं। बिल्कुल,
1: लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेशों को।
3: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
4: Nexa.
5: सुनो ना,
4: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है, हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
7: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर फिरदौस आलम है, एंटी मेडिसिन सिटी मुंगेर बिहार से बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी सी समस्या समझते हैं, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सर में दर्द हो सकता है और ये

0: काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल कर सकता है। कुछ लोग को सही से सांस ना ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह समय पर सही इलाज करें। धन्यवाद।
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: बिल्कुल। और इस जरूरी संदेशों के बाद किशन भाई
3: जी,
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं
3: जी।
2: और लगातार 90 वर्षों से आकाशवाणी के माध्यम से इस प्रकार की विभिन्न जानकारियों के माध्यम से
3: जी
2: अपने श्रोताओं को, चाहे वो खेतीबाड़ी के कार्य हो
3: जी,
2: मौसम संबंधी जानकारी हो
3: जी,
2: तकनीक की जानकारी हो, शिक्षा की जानकारी हो, रोजगार की जानकारी,
3: देश विदेश में कहाँ कौन सी घटनाएं घट रही है, खेल कूद समाचार कहाँ हो रहे हैं, कहाँ सम्मेलन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे देशों के बीच कौन से संबंध, वैश्विक संबंध, व्यापारिक संबंध क्या क्या हो रहे हैं, तमाम बातों की, खबरों की जानकारी भी हमारे प्रसारण के माध्यम से मिलते हैं लाखों भाई।
2: और साथ ही गीत संगीत का भी आनंद हम लोग लेते हैं
3: जी। बारिश में बदरा कजरी, इसके भी बड़े अलग सुखद अनुभूति होती है।
2: बिल्कुल।
3: बढ़िया सा झूमर सुनते फिर से।

0: और अब किसान भाई, हम लोग बाग बगीचा लगाने के बारे में यदि सोच रहे हैं आप लोग, तो अभी का समय बड़ा ही उपयुक्त है। बरसात का समय है, खास करके वैसे किसान भाई जो बाग बगीचे लगाने के शौक रखते हैं, मिट्टी की तैयारी कर चुके हैं, गड्ढे खोद चुके हैं, तो आम के बाग लगाएं। इस विषय पर डॉक्टर रूपी रानी क्या जानकारी देती हैं, आइए किसान भाइयों हम लोग जरा जानकारी प्राप्त कर लें।
1: साधारण में लोकप्रियता के कारण इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसके कच्चे एवं पके फलों से विभिन्न तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ियाँ भी काफ़ी उपयोगी होती है तथा पत्तियों का उपयोग बहुत से धार्मिक कार्यक्रमों में होता है, इसलिए इसे शायद फलों का राजा कहा जाता है। धान, गेहूँ, मक्का आदि फसलों की तुलना में कम मेहनत एवं लागत में आम के बगीचे लगाने से ज़्यादा आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। अतः बागवान आज के समय में काफ़ी संख्या में नए आम के बगीचे लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, परंतु बाग लगाने के पूर्व कुछ मूलभूत जानकारी भी आवश्यक है, जैसे किस जमीन का चुनाव करना चाहिए, किस्म की समुचित का समुचित चुनाव, लगाने की अच्छी विधि तथा नए बागों की उचित देखभाल आदि। आम का बगीचा लगाने के पूर्व इन सभी पहलुओं की जानकारी बागवान के पास होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू है जमीन का चुनाव। यूं तो आम हर प्रकार की मिट्टी में लगाई जा सकती है, परंतु पौधे की अधिक बढ़वार तथा अधिक फलन के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी की अम्लीयता 5.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय मिट्टी इसके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आम की जड़ें बहुत गहरी तक फैली रहती है, अतः अगर इसे कंकरीली जमीन पर लगाना चाहते हैं तो किसान भाई ये ध्यान दें कि 2 से 2.5 मीटर की गहराई तक कोई चट्टान ना हो, अन्यथा पेड़ की वृद्धि रुक सकती है तथा इसके सूखने की संभावना भी बढ़ जाती है। जल जमाव वाली जमीन का चुनाव आम के बगीचे के लिए ना करें तो अच्छा होगा। अगर वैसी जमीन में आपको बगीचा लगाना ही है तो पौधे लगाने वाले स्थान पर मिट्टी डालकर थोड़ा ऊंचा कर लें, ताकि वो 2 से 2 से 1

0: 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर वो समतल रहे और इसी ऊंची जमीन पर वृक्ष लगाएं ताकि पौधे के जड़ क्षेत्र में जल जमाव ना हो। इसके बाद आता है जमीन किस्म का चुनाव। आम के बाग लगाने के पूर्व उपयुक्त किस्म का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस्म का चुनाव निर्भर करता है फल की गुणवत्ता, उत्पादकता, बाजार में इसकी मांग तथा किस्म के लंबे समय की उपलब्धता पर। हमारे राज्य में मुख्यतः मालदा, जिसे अन्य जगहों में लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, बम्बई, चौसा, जरदालू, गुलाब खास, हेमसागर, कृष्णभोग आदि की बाजार में ज़्यादा मांग है। आजकल आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी आदि किस्मों की भी मांग बढ़ रही है। आम्रपाली एवं मल्लिका की किस्में प्रत्येक वर्ष फलन में आती है। अन्य किस्में जैसे सीपिया, शुक्कुल, जर्दा आदि रसीली किस्में हैं जिनकी उपलब्धता लंबे समय तक अर्थात जुलाई के अंत तक भी मौजूद रहती है। अतः हमारी प्राथमिकता के आधार पर हमें किस्म का चुनाव करना चाहिए। और लेकिन हमारे राज्य में मुख्यतः बागवान बम्बई, मालदा, आम्रपाली आदि किस्मों की मांग ज़्यादा किया करते हैं। मुख्यतः ऐसा देखने में आता है कि बागवान एक ही किस्म के बाग लगाना चाहते हैं, परंतु अच्छे फलन के लिए आवश्यक है कि बागवान कम से कम अपने बगीचे में 2 किस्म या उससे अधिक किस्मों का चयन करें, इसका पोषण करें ताकि आपका पौधा जो है अच्छे फलन में आए और ससमय फलन में आए, अच्छी उत्पादकता के साथ है।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just ₹6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें ₹250 से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
5: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशन लाल हरिया से बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी उस मर्रा की सुनीली पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस न ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही है तो अंदाज न करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर सही इलाज कराएं।
4: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor while prepared with care. Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
6: और आज के दिन हमारा प्रायोजित कार्यक्रम होता है आयुष्मान लाखों भाई।
7: बिल्कुल,
6: आइए हम लोग अपने श्रोताओं के साथ इस प्रायोजित कार्यक्रम को सुनते हैं।
8: आयुष्मान, ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: हेलो बिहार वालों, अरे हमने हेलो कह दिया, आपका राजेश आपको हेलो कह दिया, लेकिन नहीं, हम कहेंगे सब लोगों को नमस्कार है राजेश की तरफ से। और राजेश एक बार फिर से स्वास्थ्य पत्रिका, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका कहें तो अच्छा होगा, आयुष्मान लेकर आप सबों के घर आंगन में आ गया। जी हाँ, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हम यही चाहते हैं। हम बोले तो इस कार्यक्रम को हम जिनकी तरफ से लेकर आ रहे हैं, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुहार रोहतास सासाराम की तरफ से। हाँ, ये इच्छा है कि सारे लोग, हाँ कोई भी बीमारी आपको तो हो ही नहीं, अगर हो जाए तो उससे निजात मिल जाए। लगातार आपके घर आंगन में आते हैं, विशेषज्ञों से मुलाकात करवाते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं और आपके जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, हाँ सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, जब पूरा बिहार, पूरा झारखंड इसे सुनता है ना, और जब फोन करता है हमें इस नंबर पर 6206803040, हमने कहा 6206803040, तब हमें एहसास होता है कि ये पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान कितना कारगर साबित हो रहा है। आयुष्मान ये एक बहुत ही उम्दा नाम है, आयुष्मान भव मतलब आप अच्छे से रहें, आपकी कीर्ति दुनिया में फैले। और इसी से संबंधित, इसी से नाम से संबंधित देश में स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, आयुष्मान कार्ड, जिस पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी होता है। हम इस बात की जानकारी हम दे रहे हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, लगातार हम डॉक्टर रजत कालरा को बुलाते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि आफ्टरऑल राजेश केवल डॉक्टर रजत कालरा से ज्यादा बातचीत क्यों करवाता है। डॉक्टर रजत कालरा चाइल्ड कार्डियक सर्जन हैं, बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और किसी भी घर, हाँ, की जान जो होती है ना वो बच्चे होते हैं। उस माता पिता से पूछिए जिनके गोद में किलकारी लेता हुआ बच्चा हंसता मुस्कुराता है, कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को कहीं कोई बीमारी हो जाए हृदय से संबंधित, तो इससे बुरा कुछ भी उसके जीवन में नहीं हो सकता है ना। इसीलिए हम डॉक्टर रजत कालरा को हमेशा बुलाते हैं और आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं कि अगर बच्चों में, आपके बच्चे में दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई रोग है, ये लक्षण दिख रहे हैं, ऐसा बच्चा बिहेव कर रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, हृदय में छेद है, हाँ, तो परेशान ना हो, उसका इलाज भी आ गया है। और डॉक्टर रजत कालरा इस क्षेत्र के महारथी डॉक्टर हैं और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर रोहतास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत कालरा। अब इनसे हम जानकारियां इनके क्यों पूछें, हाँ सीधे सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। और अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि, हाँ रेडियो के वैसे, कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है। और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040। ये नंबर है और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
1: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में कैसे आती है?
1: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहाँ पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
0: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040 ये नंबर है, ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैलन्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए मेल न्यूट्रिशन जहाँ तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशेंसी है उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहाँ पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीज़ें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा।

0: सेप्सिस का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है। तो बस आज हमें यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: और अब हम लोग भी यहीं अपने श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, सबको किशन का नमस्कार
4: और सबको लाखों का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हम अपने रांची केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह का किया निरीक्षण। कहा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए है उत्साहजनक। झारखंड के दो नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों झामुमो के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी को आज राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारी पूरी। रांची में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में किया संशोधन। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पैकेट पर लगाना होगा QR कोड। और मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जैप वन ग्राउंड में आयोजित बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह में शामिल होकर परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। समारोह में 4 पुलिस उपाधीक्षक और 336 नवनियुक्त आरक्षियों ने प्रशिक्षण पूरा कर शपथ ली तथा मार्च पास्ट और कदम ताल के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आवासीय विद्यालयों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए उत्साहजनक है।
2: सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनखे के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बन जाते हैं। अलग अलग चुनौतियां हम सबों के बीच में रहती है, उन चुनौतियों को भी हमें खत्म करने की आवश्यकता है, उसको समाधान करने की आवश्यकता है।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा गुजरात से चुने गए सदस्यों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मुहर्रम को लेकर रांची में विभिन्न स्थानों से जुलूस निकाले जाने के कारण पुलिस अधीक्षक यातायात ने कल सुबह 11 बजे से जुलूस समाप्ति तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई है। किशोरी सिंह यादव चौक से अपर बाजार से महावीर मंदिर होते हुए शहीद चौक, सुभाष चौक, कचहरी चौक, चडरी तालाब, प्लाजा चौक, पुरुलिया रोड, सुजाता चौक, करबला चौक, कडरू और मैकॉन चौक समेत 15 से अधिक मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। ट्रैफिक SP राकेश सिंह ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर अन्य मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है, इसलिए नागरिक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
3: 26 तारीख को जो ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा वो 1 बजे से मेन रोड पे जो सज्जना चौक है वहाँ से लेके रतन टीकी तक पूरा रूट डाइवर्ट रहेगा। जो जाने वाला रास्ता है वो वन वे रहेगा। और जो 27 को है वो मेन जुलूस 27 को निकाला जा रहा है।
1: धनबाद में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। त्योहार के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में मेजर जनरल सज्जन सिंह मान और डोरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेमचंद्र ने शिष्टाचार मुलाकात की। रांची में पहली बार आयोजित होने जा रहे डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी झारखंड के लिए गौरव की बात है और इससे राज्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा और बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने और खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन तथा खेल प्रेमियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है।
4: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
5: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष दवा ब्रांडों की प्राथमिक पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्यूआर कोड आधारित पहचान की आवश्यकता पहले देश के शीर्ष 300 दवा ब्रांडों तक ही सीमित थी। टीके, मादक और मनोरोगी दवाओं और कैंसर रोधी दवाओं से संबंधित प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होंगे, जबकि रोगाणु रोधी दवाओं से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई 2028 से प्रभावी होंगे। मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हजारीबाग समाहरणालय भवन परिसर में हेल्प डेस्क का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने किया। इस अवसर पर हेल्प डेस्क मैनेजर राजेश पांडे ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता हेल्प डेस्क के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन, मतदाता सूची से नाम हटाना तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
6: हम लोग यहाँ मतदाता सहायता के लिए उपलब्ध है कि किसी तरह का अगर पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है और किसी को ढूंढना है, 2003 में अपना वोटर लिस्ट में नाम सर्च करना है, उनको नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। 2003 से रिलेटेड हो गया, वोटर कार्ड से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
1: मौसम विभाग ने चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के 18 जिलों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे के बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रांची में 24 से 26 जुलाई तक आयोजित होने वाली 16वीं झारखंड राज्य जूनियर एवं सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के लिए रांची जिला तैराकी संघ 28 जून को होटवार स्थित वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम में चयन परीक्षण आयोजित करेगा। चयन ट्रायल में रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं भाग लेंगे। तैराकों के लिए SFI UID अनिवार्य है तथा प्रतिभागियों को जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह का किया निरीक्षण। कहा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए है उत्साहजनक। झारखंड के 2 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों झाबुमो के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी को आज राज्यसभा के सभापति CP राधा कृष्णन ने दिलाई शपथ। मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी। रांची में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में किया संशोधन। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पैकेट पर लगाना होगा QR कोड। और मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की दी चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी।
8: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायिका है शर्मिला गुप्ता। आरंभ में इनके स्वर में सुनते हैं एक शिव भजन।

इस कजरी के साथ ही लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायिका थी शर्मिला गुप्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के माध्यम से आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाई।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: प्रदेश भाजपा की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के समय बनाए गए मीसा कानून के तहत बिना कारण और बिना न्यायिक समीक्षा के 1,31,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था।
3: मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं, 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था।
0: केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल के दौरान पटना से शुरू हुए जन आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह स्वयं भी इस संघर्ष के सहभागी रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध लड़ाई का बीज बिहार की धरती पर पड़ा था और यहीं से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान के सभी मूल्यों का गला घोंट दिया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही सीख है कि जनता संविधान और प्रजातंत्र का गला घोंटने वालों को समय आने पर मजबूती से जवाब देती है।
3: हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोंटा गया, प्रेस का गला घोंटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग गई, संविधान पर कुठाराघात हुआ, आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोंटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और जनस्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। ये 25 जून जब आता है तो लोगों के लिए चिंता का दिन हो जाता है। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश

0: रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अपने संस्मरण साझा किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था।
1: 25 जून की अर्धरात्रि 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया और उसमें सभी बड़े बड़े नेता लोग सब लोग एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए। उस दौरान हमें भी गिरफ्तार करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन फिर एक कुर्की जब्ती हमारा कर लिया गया। तब मैंने जाकर के अपना गिरफ्तारी दिया था और गिरफ्तारी देने के बाद जब मैं पटना में बाहर आया था तो बाहर के नाम पर फिरौल मिला था, तो उस पर आए थे और आकर के फिर इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका मैं निभाता रहा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त किए जाने की यादें दोहराई हैं।
2: जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पुलिस सामने खड़ी थी और मुझसे सीधे पूछा, तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चला है? तो मैंने कहा कि भाई मेरी परीक्षा है, मेरी बात तो सुने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पहले तो थप्पड़ मारे, अंदर घुसे, तलाशी ली तो मेरे यहाँ से सारा मटेरियल मिल गया। आपातकाल हटाओ और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, सारे मिल गए। तो वहां से पीटते हुए ले गए हबीबगंज थाना। मैं जेल के अंतिम 9.5 महीने बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाया मैं।
0: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। श्री झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे।
3: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रहे इसी आपातकाल। और आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, उसी माइंडसेट में है।
0: विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। मुंगेर के 3 नंबर गुमटी के पास स्थित सामुदायिक भवन में भाजपा की ओर से आपातकाल के दौरान विरोध करने वाले सेनानियों का सम्मान किया गया। इधर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। अन्य जिलों में भी आपातकाल की वर्षगांठ को लोकतंत्र बचाओ के संकल्प के साथ मनाया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में आपातकाल पर अध्याय शामिल किया है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम से शामिल अध्याय में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। एनसीईआरटी ने पहली बार स्कूल स्तर पर आपातकाल को विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इसे लेकर देशभर में नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भोजपुर कथित मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच से घटना का सच सामने आएगा। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही रिपोर्ट आएगी और न्याय होगा।
6: भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा, और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाए।
0: इधर मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग

0: पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि डॉक्टर सिंह पर बिना सूचना अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही का आरोप सत्यापन के क्रम में सही पाया गया है। पीएमसीएच के स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग में प्राध्यापक डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मंडल ने कहा कि 24 जून को राज्य में 9068 मेगावाट के रिकॉर्ड बिजली की मांग को पूरा करने में विभाग सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है और लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। शेखपुरा, अरवल समेत विभिन्न जिलों में आज फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर, पटना सिटी समेत विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग पर पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहनी टोला में पुलिस ने 3 फरार अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। इन सभी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। अररिया जिले के रानीगंज और आरएस थाना क्षेत्र से पुलिस ने विभिन्न मामलों के वांछित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवहर व्यवहार न्यायालय में आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बंदूक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ऋचि पांडे ने आज पुनौरा धाम मंदिर निर्माण परियोजना के तहत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
3: सीतामढ़ी जिले के कई अभ्यर्थियों ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा के परिणाम में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। रूनी सैदपुर के अभिषेक आनंद और सुरसंड के राहुल कुमार का चयन उप समाहर्ता पद के लिए हुआ है। वहीं सोनवर्षा के कृष्णा कुमार और डुमड़ा के सुमेधा आर्यन का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए किया गया है। इसके अलावा बोखरा के जयानंद ठाकुर का चयन कारा अधीक्षक पद पर हुआ है। इन सफल अभ्यर्थियों की उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। परिजनों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर बीते दिनों जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 3,227 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 298 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई तथा कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा आयोजित कराई गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी रिचि पांडे और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी, पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की और शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जिले में बीते दिनों कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। जिले में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वहीं मॉनसून का देखते हुए जिले में संभावित बाढ़ की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। तटबंधों, सड़कों और संवेदनशील स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तथा सुरक्षा कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, राहत शिविरों की व्यवस्था, नावों की तैयारी तथा आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले के भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। इस दौरान विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बीते दिनों सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। सांसद ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इधर जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बीते दिनों विभिन्न स्थानों पर आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविरों में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया तथा आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों और आवेदनों का निष्पादन हर हाल में 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में ऐसे शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सीतामढ़ी जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिले में एक अनूठी पहल की गई है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण से तैयार 85 बेंच विभिन्न पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर उपयोगी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।
2: अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483।
5: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7:52 हो चुके हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं प्रतिभा सिन्हा। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं एक पारंपरिक भजन।

सुरलहरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायिका थी प्रतिभा सिन्हा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। पेश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म जाने अनजाने से लिया है। गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीतकार शंकर जयकिशन, युगल आवाज़ें

लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी को अब आइए सुनते हैं फिल्म काला पत्थर में। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

लता मंगेशकर एवं मोहम्मद अजीज का गाया। सुनते हैं फिल्म हम भी इंसान हैं का एक नगमा। गीत के बोल शमीर के हैं और संगीत तैयार किया है बप्पी लाहड़ी ने।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। अनुराधा पौडवाल एवं मनहर उदास का गाया फिल्म हीरो का एक गीत सुनते हैं। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब लता मंगेशकर का गाया सुनते हैं फिल्म नागिन का एक गीत। गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
4: अमित कुमार एवं आशा भोसले के स्वर में सुनिए फिल्म इल्ज़ाम का गीत। गीतकार अनजान, संगीतकार हैं बप्पी लाहड़ी।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत तैयार किया है हेमंत कुमार ने।

0: रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
3: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7

0: 7.5 मापी गई एक रिपोर्ट।
1: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. and in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast

0: in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
1: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
0: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez today said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes rocked the country. The acting president had said earlier that at least 32 people had died after last night's 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes and that the toll was expected to rise. The quakes were among the strongest to strike Venezuela in more than a century and could be felt throughout the region. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. Government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Minister of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees would be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. India today hosted the 11th BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana, under its BRICS Chairship 2026. The Ministry of Power said that the meeting brought together energy ministers, vice ministers and senior officials from BRICS member countries to discuss key global energy challenges and strengthen cooperation in the energy sector. It added that the meeting concluded with the adoption of the 11th BRICS Energy Ministers Joint Communique, reaffirming cooperation in energy security, sustainability, innovation, resilient infrastructure and capacity building. Addressing the meeting, Union Minister of Power Manohar Lal said, energy remains fundamental to economic growth, social progress and human development. He emphasized that developing countries need adequate time, resources and policy space to pursue sustainable development while meeting the aspirations of their people.
2: Energy remains fundamental to economic growth, social progress and human development. Affordable, reliable and sustainable energy is indispensable for achieving our developmental aspirations and the sustainable development goals. India assumes the BRICS chairship at a time when the global energy landscape is undergoing a profound transformation.
0: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today met Minister of Petroleum of Iran, Mohsin Paknijat, on the sidelines of BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana today. In a social media post, Mr. Puri said that during the meeting, both leaders explored opportunities to cooperate in the energy sector. He noted that India remains committed to enhancing energy security through dialogue, partnership and mutually beneficial engagement. Uttar Pradesh government has taken action in the alleged Ram Temple donation anomaly case in Ayodhya and arrested three persons. ADG Lucknow Zone Praveen Kumar told Akashwani News that three persons have been arrested. He said that an FIR has been registered at Ayodhya police station on the complaint of Krishna Mohan, a member of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The case has been registered under sections 306, 306.5 and 317. Of the Bharatiya Nyaya Samhita BNS. A total of eight people have been named as accused in the FIR, though no major or prominent name has been included. Six of the accused are reportedly cashiers. The action comes after the special investigation team submitted its investigation report. The probe was related to alleged irregularities in the handling of donations received for the Ram Temple. Railway Minister Ashwini Vaishnav held a review meeting today with senior railway officials where reforms aimed at making Indian railways the preferred mode of freight transport for various types of commodities were discussed. The meeting also highlighted that the success of recently developed specialized wagons for commodities such as cement and salt has demonstrated the importance of designing wagons in accordance with industry operational requirements. Commodity-specific wagons have improved loading, unloading and transportation efficiency, thereby enhancing the attractiveness of rail logistics. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bangabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Centre IVAC in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. Expressing satisfaction over the large number of applicants at the centre, the High Commissioner announced the resumption of normal visa operations for Bangladeshi citizens. He said applications for tourist visas will be accepted from the 28th of this month.
3: I'm very happy to announce that we are resuming our normal visa applications for tourist visas, which can be submitted from 28th of June 2026. We will continue to facilitate medical visas in urgent cases on humanitarian consideration and grounds.
0: Prime Minister Narendra Modi today welcomed Amazon's record investment of $48 billion in India. Mr. Modi met the CEO of Amazon, Andy Jassy, in New Delhi. In a social media post, the Prime Minister said that the investment will create new opportunities for the youth. He added, it shows the growing interest across the world to invest in India. Talking to media, Andy Jassy said he is inspired by PM Modi's vision of a Viksit and Atmanirbhar Bharat and committed to being a long-term partner in India's growth story.
4: Prime Minister's vision for the last 12 years is just remarkable, and how important the country is in almost every aspect around the world. And at the end of last year, we announced that we were going to invest another $35 billion in India between 2026 and 2030. And we just announced today that we're going to increase that amount from $35 billion to an incremental $48 billion.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and a politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said the inclination to assert differentials is greater and capabilities too are deployed with less hesitation. He stated that technology advancement is itself encouraging such traits. Dr. Jaishankar said that forging new understandings and closer relationships among influential nations will help to stabilize the global order and address issues and problems through agenda-specific cooperation.
5: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
0: Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the global jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that the contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. In the ICC Women's T20 World Cup, Bangladesh set a target of 137 runs against India in Group A clash of the Emirates Old Trafford in Manchester. Chasing the target, India were 47 for 1 in 4.3 overs when reports last came in. Earlier, Bangladesh won the toss and opted to bat first. While batting, Bangladesh scored 136 runs with a loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US today, late night. The match is scheduled to begin at 1:30 a.m. IST. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in US. The match will begin at 1:30 a.m. IST. Later, Japan will take on Sweden in Group F match in Arlington, US tomorrow early morning. The IMD has said that the conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Free Trade Agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July, Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
6: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस फीस अब 5,000 रुपए होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती मुआहिदा CETA आलमी मईशत को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तजारती मुआहिदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहिदों में सबसे जामे मुआहिदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती समझौते के निफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा अहम मादियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने आज भारत में अमेजन की $48 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अमेजन के CEO एंडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एनडी जैसी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अज़्म जाहिर किया। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी रॉड्रिग्स ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजले में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद कम से कम 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी, ताहम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा था। ये जलजले गुज़िश्ता एक सदी में वेनेजुएला में आने वाले सबसे ताकतवर जलजलों में शुमार होता है, जिसके झटके पूरे खित्ते में महसूस किए गए। कई इमारतों को खाली करा लिया गया, जबकि जलजले के असरात ब्राजील के अमेजोन इलाके में महसूस किए गए, जो वेनेजुएला की राजधानी काराकास से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। इस दौरान वेनेजुएला की सदर ने जलजले के बाद भारत की जानिब से इजहार यकजहती की सताइश करते हुए कहा कि यह मुश्किल वक्त में दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान तआवुन और दोस्ती के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के ताजियती पैगाम और इमदादी सरगर्मियों में तआवुन की पेशकश का भी खैर मकदम किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियारों की तैयारी और जखीरा अंदोजी ज्यादा खतरात मोल लेने और सोशल मीडिया के दौर की मुनासबत से की जाने वाली सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली के लिए जेजू फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इख्तलाफात पर जोर देने के रुझान में इजाफा हुआ है और उन्होंने मजीद कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से अपने आप में ऐसी इम्तियाजी खसूसियात की हौसला अफजाई होती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि COVID-19 दहशतगर्दाना वाकयात या इंतहाई मौसमियाती वाकयात जैसे चैलेंजों से निपटने की गरज से बैन अल-अक़वामी ताउन और इश्तराक की जरूरत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर अतियात में मुबैना खुदबुज से मुतालिक केस के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ जोन के DG परवीन कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि तीन अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक FIR दर्ज की गई है। FIR में कुल 8 अफराद को नामजद किया गया है, हालांकि इनमें कोई बड़ा या नुमाया नाम शामिल नहीं है। 6 मुलजिम मुबैना तौर पर कैशियर बताए जाते हैं। ये कार्रवाई एक खसूसी तहकीकाती टीम SIT की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है। ये छानबीन राम मंदिर को मिले अतियात के मामले में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग के मौके पर ईरान के पेट्रोलियम के वजीर मोहसिन पाकनेजाद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पुरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने तवानाई के शोबे में ताउन के लिए मौके के बारे में गौर खोज किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मुजाकरात, साझेदारी और बाहमी तौर पर मुफीद रवाबित के जरिए तवानाई की यकीनी फराहमी में इजाफे के लिए अहदबंद है। भारत ने आज ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। बिजली की वजारत ने कहा है कि इस मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा, नायब वजरा और सरकर्दा ओहदेदारों ने एक जगह जमा होकर तवानाई से मुतालिक कलीदी आलमी चैलेंजों और तवानाई के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि मीटिंग में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वें मुश्तरका एलामिया को मंजूरी दी गई, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारियत, इख्तरा, इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचा और सलाह साजी से मुतालिक शोबों में ताउन की तौसीक की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि तवानाई इक्तिसादी नमू, समाजी तरक्की और इंसानी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट के लिए दरखास्त फीस में इजाफा कर दिया है। अब 36 सफहात पर मुश्तमिल नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस 2,500 रुपये होगी। पासपोर्ट तरमीमी जवाबे 2026 का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नई फीस के तहत तत्काल स्कीम के तहत नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए 5,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 60 सफहात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट या इसकी तजदीद की फीस 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि तत्काल के तहत इसकी फीस 6,000 रुपये होगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त 36 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये और 60 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये है। अगर 36 सफहात वाला पासपोर्ट गुम या खराब हो जाता है तो इसके बदले नया आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए 5,000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह 60 सफहात वाले गुमशुदा या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट हासिल करने की फीस 6,000 रुपये होगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें भारतीय रेलवे को मुख्तलिफ अकसाम की अशिया की बारबरदारी के लिए सबसे पसंदीदा जरिया बनाने के लिए मुजवजा इसलाहात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाल ही में सीमेंट और नमक जैसी अशिया की तरसील के लिए तैयार किए गए खसूसी वैगनों की कामयाबी ने इस अहमियत को वाज किया है कि वैगनों का डिजाइन सनत की अमली जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। मखसूस अशिया के लिए तैयार करदा वैगनों ने सामान की लोडिंग, ऑनलोडिंग और नकलो हमल की कारकर्दगी में बेहतरी पैदा की है, जिसके नतीजे में रेल के जरिए माल बर्दारी का निजाम मजीद मुअस्सर और पुरकशिश हुआ है। जनाब वैष्णव ने कहा कि डिजाइन की मंजूरी और इब्तदाई नमूने की तैयारी के लिए सख्त मेयारात अपनाने से भारत में आला तरीन मेयार के वैगनों की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। दिफा के शोबे में खुद किफालत की समत एक अहम संग मील हासिल करते हुए दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे DRDO ने मुल्क में ही तैयार करदा निट्रा कबल अज वक्त फजाई वार्निंग और कंट्रोल निजाम के लिए हतमी ऑपरेशनल मंजूरी FOC हासिल कर ली है। FOC सर्टिफिकेट्स आज बेंगलुरु में मुनाकिदा एक शानदार तकरीब के दौरान भारतीय फजाइया के हवाले किया गया, जिससे मुल्क की फजाई निगरानी और नेटवर्क पर मबनी जंगी सलाहियतों में नुमाया इजाफा हुआ। इस तकरीब के मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मुल्क में ही तैयार करदा इस निजाम की तारीफ करते हुए कहा कि इसने बालाकोट कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मिशनों में अपनी काबिल एतमाद कारकर्दगी को साबित कर दिया है। बांग्लादेश में भारत के नए तकर्रुर करदा हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में वाकई बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपनी सिफारती असनाद पेश करने के बाद बाजाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सदारती महल में असनाद पेश करने की तकरीब के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में भारतीय वीजा दरखास्त मरकज IVAC का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज के कामकाज का जायजा लिया और हुक्काम से मुलाकात की। اس مرکز میں ویزا درخواست گزاروں کی بڑی تعداد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے معمول کی ویزا خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی ویزا کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ روذرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح سویرے 4:30 بجے پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج صبح مونٹیری کے مقام پر جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا پر 1-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے میزبان سری لنکا اے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 333 رن بنا لیے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش SIT کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد FIR درج کر لی گئی ہے۔ 1 جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
7: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म काजल से लिया है। आशा भोसले एवं महेंद्र कपूर ने इसे गाया है।

मोहम्मद रफ़ी, भूपिंदर, तलत महमूद एवं मन्ना डे के मिली जुली आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म हकीकत का एक नगमा। गीत के बोल कैफी आज़मी के हैं और संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

किशोर कुमार एवं सपना मुखर्जी के युगल स्वर में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म जांबाज का एक नगमा। गीतकार इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

अब सुनिए महमूद एवं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म गुमनाम का एक गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: ओए हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो...

ताले तग भूमि तग ताले तग जमी तग धला अंग तग जग तग तादे के नत तग नक तग झुम तग नक नक झुम तग नक नक झुम तग नक नक जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबो तारी के ताले जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबो तारी के जम तारी जग तारी जग नक तक तजन तजन तजन तक जम तारी जग तारी जन जाने को तजन तजम तजन तक तग दंग गंग गंग।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म मिस मैरी का एक गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार, युगल आवाजें लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी की है। सुनिए कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग मालकौस में।

0: आप सुन रहे थे उस्ताद विश्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग मालकौंस में। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हाजिर हैं हम लेकर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। सुनने वालों की खिदमत में विशाल आनंद का प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज हमारे साथ सुरों के एक खूबसूरत संगीतमयी सफर पे।
1: क्या सुनेंगे आप?
2: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: सुरीले इस सफर में सुरों की सम्राज्ञी जो आज

हमारे साथ होंगी वो हैं भारत की जानी मानी और दिग्गज पार्श्व गायिका, जिन्होंने 4 दशकों में लगभग 20,000 से अधिक गीत गाए। हाल ही में उन्हें विगत 23 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इन्हीं गायिका की। और आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ होंगी सुर सम्राज्ञी अलका याज्ञिक।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च सन 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी माँ शोभा याग्निक भी एक शास्त्रीय गायिका थी और इस कारण अलका याग्निक की जो प्रथम गुरु थी वो उनकी माँ ही हुई। माँ के सानिध्य में धीरे धीरे अलका याग्निक ने अपने संगीत के सुरों की उंगलियां थामी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की शुरुआत की। सफलता भी उन्हें बेहद शुरुआती दिनों में ही मिल गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महज 6 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता के आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया गया था। 6 साल की उम्र में ही इस केंद्र पर उन्होंने अपने भजन एवं गीत रिकॉर्ड करवाए। बाद में 10 साल की उम्र में उनकी माँ उन्हें मुंबई ले आईं ताकि बेहतर करियर की तलाश की जाए और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई जाए। सन 1990 की दशक में बॉलीवुड की अग्रणी महिला गायिका के तौर पर अलका याग्निक उभर कर सामने आई। कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम के साथ उनकी जुगलबंदी काफ़ी मशहूर थी। ये वो दौर था जब फिल्मी दुनिया में कई दिग्गज और जानी मानी महिला पार्श्व गायिकाओं का कब्जा था। यहाँ तक कि लता मंगेशकर, आशा भोसले के भी दिन अभी ढले नहीं थे। साथ ही साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति जैसी सभी आवाजों के सामने अलका याग्निक को अपनी संगीत की क्षमता प्रदर्शित करनी थी। कई संगीतकारों के साथ उन्होंने मिलकर एक से एक ऐसे गीत गाए कि सुनने वाले उनके बस दीवाने हो गए।

सन 1979 की फिल्म पायल की झंकार से इन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1981 की फिल्म लावारिस के गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है इससे मिली। संगीत करियर की ऊंचाइयां खास करके 90 के दशक में अलका याग्निक बॉलीवुड की सबसे प्रमुख महिला आवाज बन गई। उन्होंने कुमार शानू और उदित नारायण के साथ मिलकर कई सुपरहिट युगल गीत गाए। उनके प्रसिद्ध गीतों में से 1, 2, 3 फिल्म तेजाब से, अगर तुम न हो तमाशा से, चुरा के दिल मेरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और कुछ कुछ होता है जैसे गाने काफ़ी चर्चा में रहे। उन्हें YouTube पर लगातार सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले वैश्विक कलाकारों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 7 बार उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार मिल चुका है। यह आशा भोसले के साथ एक संयुक्त रिकॉर्ड है। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2020 में पद्मश्री का भी सम्मान उन्हें मिल चुका है।

सन 1889 में अलका याग्निक का विवाह शिलांग के एक व्यवसायी नीरज कपूर से हुआ। उनके साथ वैवाहिक जीवन बिताते हुए उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम है सेसा कपूर। अलका याग्निक न सिर्फ पार्श्व गायन के क्षेत्र में बल्कि कई टीवी कार्यक्रमों में भी उनका सीधा सीधा जुड़ाव देखा गया है और कई कार्यक्रमों की वो हिस्सा बनकर कार्यक्रम को सफल बनाई हैं। पिछले करीब 2 साल से उन्हें सेंसोरली न्यूरल नर्व हेयरिंग लॉस नामक एक दुर्लभ बीमारी ने घेर लिया है। इस समस्या के कारण उनके सुनने की क्षमता पूर्णतः प्रभावित हुई है और गायन के क्षेत्र से पार्श्व गायन के क्षेत्र से उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली है और अपनी बीमारी के प्रति डॉक्टरों से मिलकर उनके इलाज में इन दिनों व्यस्त है।

ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफ़र। आज के इस सुरीली सफ़र में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे फिल्में थी तेजाब, ताल, राजा हिंदुस्तानी और कयामत से कयामत तक। मिलीजुली आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक एवं साथियों की थी। और अब आज के कार्यक्रम से अब दीजिए हमें विदा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
4: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the President of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bengabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Centre in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 AM IST. And that's the end of this news bulletin.

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारा आज का यह प्रसारण यहीं संपन्न होता है। कल प्रातः 5:48 पर हम अपने कल के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय